मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के बैसाख माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद

0: नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज का विचार। विषय है अद्वैत दर्शन। वाचक स्वर डॉक्टर छगन मोहता का है।
2: भारतीय अध्यात्म की दार्शनिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान वेदांत दर्शन का माना गया है। वेदांत दर्शन में सर्वश्रेष्ठ स्थान अद्वैत का है। अद्वैत के दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार विश्व की परम सत्ता को सच्चिदानंद अद्वैत और अपरिछिन्न यानी असीम अनंत अनादि और अथाह कहा गया है। ये सत्ता अपने पारमार्थिक रूप में प्रकृति और उसके परिणाम रूपी संसार से परे यानी अतीत होते हुए भी वह उसका अधिष्ठान और आधार भी है। यही सत्ता व्यावहारिक रूप में समस्त अव्यक्त प्रकृति में और उसके प्रकट परिणाम तमाम वस्तु व्यक्ति और घटनाओं में ओतप्रोत रूप से व्यापक रहती है। प्राणी मात्र अपने जीवन की समस्त प्रक्रियाओं में इसी सत्ता को उपलब्ध करने या उसका साक्षात्कार करने में संलग्न देखा जाता है। उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। एक, ये परम सत्ता सतरूप है और उस सत का लक्षण ये है कि भूत भविष्य और वर्तमान किसी भी काल में जिसका अभाव न हो। प्रत्येक मनुष्य व प्रत्येक प्राणी इस सत्ता में व्याप्त और कार्यरत होने का संकेत यही दिखाता है कि प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है। अपना अभाव या मृत्यु कोई भी नहीं चाहता। ये सत्ता चित स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक प्राणी निरंतर कुछ न कुछ जानना चाहता है। मनुष्य में पाई जाने वाली जिज्ञासा वृत्ति इसी का संकेत है। परम सत्ता आनंद स्वरूप भी है, इसलिए प्रत्येक प्राणी सुखी रहना चाहता है। कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता। प्राणी मात्र की चेष्टा दुख के निवारण और सुख प्राप्ति के लिए ही होती है, जो उसमें आनंद तत्व के निहित होने का संकेत है। ये सत्ता अपरिछिन्न और देश काल वस्तु से सीमित या बाधित नहीं है, इसलिए प्रत्येक प्राणी विशेषतः मनुष्य मात्र अपने देश काल और परिस्थिति की बाधाओं का अतिक्रमण करके उससे मुक्त होना चाहता है। ये इस बात का संकेत है कि मनुष्य किसी प्रकार की सीमा या बंधन को इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि परम सत्ता सर्वथा निर्बंध और मोक्ष स्वरूप है और वह प्रत्येक के हृदय प्रदेश में क्रियाशील है। परम सत्ता अद्वय अर्थात अद्वैत स्वरूप है, जिसका भावार्थ यह है कि उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वास्तविक सत्ता नहीं है और वही अद्वैत सत्ता वस्तु मात्र, प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र में व्यापक और क्रियाशील है। इसलिए प्रत्येक वस्तु, प्राणी और मनुष्य की गति

0: अपने को बेजोड़ अनुपम और अद्वितीय सिद्ध करने की ओर पाई जाती है। संसार के किसी भी एक जाति के वृक्ष फल और उसी एक ही जाति के प्राणियों के आकार प्रकारों में बहुत कुछ समानता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति विशेष में कुछ न कुछ विशेष प्रकार का अंतर पाया जाता है जो उसके विशिष्ट होने की ओर इंगित करता है। मनुष्य में तो ये विशेषता और भी अधिक स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती है। किसी भी मनुष्य का चेहरा सर्वथा किसी दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता। किसी भी मनुष्य के अंगूठे के निशान किसी दूसरे व्यक्ति के अंगूठे के निशान से नहीं मिलते और मानसिक गुण व क्षमता में तो ये अंतर बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को इस बात का एहसास भी है कि वह अपने आप में अनुपम अद्वितीय और बेजोड़ है और इसी अद्वितीयता को वह अपनी बोलचाल और शैली के द्वारा भी निरंतर सिद्ध करने में लगा रहता है। निष्कर्ष ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने में व्याप्त परम तत्व को ही प्राप्त करने की ओर गतिशील है। आदर्श समाज व्यवस्था व राज्य व्यवस्था ही नहीं किंतु आदर्श परिवार व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुख सुविधा पूर्वक ज्ञान का उपार्जन करता हुआ अपनी अधिक से अधिक बाधाओं का निराकरण करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने को स्वतंत्र और अद्वितीय सिद्ध कर सके।
1: अभी आपने सुना आज का विचार, विषय था अद्वैत दर्शन, वाचक स्वर डॉक्टर छगन मोहता का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। पहली स्तुति अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में।

अनुपमा देशपांडे के स्वर में आपने ये स्तुति सुनी। वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अगली प्रस्तुति समूह स्वर में।

नंदिनी शरण और साथियों के स्वर में आपने ये भक्ति रचना सुनी। इसके साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। इस पाठ में आज आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 46 से दोहा संख्या 49 तक का पाठ।

परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

अभी आपने सुना रामचरितमानस गान का सहस्वर पाठ। इस पाठ में बालकांड के दोहा संख्या 46 से दोहा संख्या 49 तक का पाठ सुनवाया गया। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

जयपुर केंद्र से प्रसारित जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे शाम 6:40 पर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर वेटनरी ऑडिटोरियम बीकानेर में आकाशवाणी बीकानेर द्वारा आयोजित शास्त्रीय संगीत संध्या के तहत सितार और सरोद पर जुगलबंदी का कार्यक्रम के प्रसारण आप सुनेंगे 9:30 पर। कलाकार हैं असित गोस्वामी और अमित गोस्वामी। तबले पर संगत करेंगे शब्बीर हुसैन कलावंत। तकनीकी प्रभारी गिरधारी राम बाटन, तकनीकी सहयोग पुरुषोत्तम संजय गौड़, सुरेश गहलोत, आलोक साहनी और मुकुल भटनागर का होगा। ओबी प्रभारी मीनाक्षी मलिक, प्रस्तुति बरखा थानवी व्यास की और रेवत राम लेघा की, संयोजन अमित सिंह का होगा। समय रहेगा 9:30। कार्यक्रम में सहभागिता करेंगी कविता वर्मा।

का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे बजरंग सारस्वत और अश्विनी व्यास। एक ही फिल्म से फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी शाम 5:05 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है ताजी हवा स्वास्थ्य का राज। लघु जानकारियां दी जाएंगी विश्व रेड क्रॉस दिवस पर, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह BARC OPEC इन सभी के बारे में, और आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी दिव्या सारस्वत और सुखमणि कौर। बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:05 पर। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंधविश्वास पर नहीं विज्ञान पर भरोसा करें, सेहत के लिए फायदेमंद होममेड पेय पदार्थ, फिट परिवार से बनता फिट इंडिया। कुछ बातें रसोई की होंगी, कुछ बातें ब्यूटी टिप्स। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मनोज कंवर खंगारोत और किरण शर्मा।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत शाम 7 बजे। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे खेती व पशुपालन में AI का आगमन, वन्य जीव जंतुओं तथा पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बढ़ते तापमान में पशुधन की देखभाल। इसी के साथ लोक संगीत सुनवाया जाएगा।

0: गांधी चर्चा इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:15। कार्यक्रम में आज का विषय है हत्या का अभिशाप। वाचक स्वर चंद्रशेखर जोशी का, प्रस्तुति रेवत राम लेघिया की और संयोजन अमित सिंह का है। सौरभ कार्यक्रम में सुनिए वार्ता खेजड़ी मरु भोम रो कल्प रूख। वार्ताकार सुनील गज्जाणी। समय रहेगा सुबह 8:30। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मुक्ता जैन की वार्ता। विषय है किसानों के मित्र पक्षी।
1: किसान भैया राम राम। किसान भैया आज अपा बात करा किसाना रा मित्र पक्षी रे बारे में। मोर, तितर, बटेर, कोआ, सिकरा, एरबाज, काली चिड़िया आदि किसाना रा हितेसी कया जाया करे है। किसाना का ये मित्र दिनों दिन लुप्त होता जा रहा है। ए पक्षी खेता में बड़ी संख्या में कीटा ने खा मार गए खा जाया करे है और किसाना को कल्याण कर दिया करे है। यदि कीड़ा री वंश वृद्धि निर्बाध रूप से होती रहे तो कुछ ही दिन में सारी पृथ्वी पर कीड़ा मकोड़ा आपा ने नजर आवेला। लेकिन आपा इन पक्षियों का आभारी हुआ ताकि ए कीड़ा ने मार गए खा जावे और अनियंत्रित जिकी वंश वृद्धि है बिने रोक दिवे। पक्षी केवल कीड़ा ने ही नहीं बल्कि चूहा, सांप, छिपकली, मेंढक आदि ने भी वंश वृद्धि ने भी नियंत्रित कार्य करे है। प्रकृति में सभी जीवारे विकास और जीवन यापन रो आधार एक दूसरे रो संरक्षण पर होया करे है। भारतीय संस्कृति में वो सिद्धांत पायो जावे है कि जियो और जीने दो रो संदेश छिपोड़ो है। जिंगी जिकी प्रासंगिकता है वा आपने नजर आ रही है। प्रकृति आपने सह अस्तित्व रो भी पाठ पढ़ाया करे है। पक्षी मानव समाज के लिए बहुत ही घणो लाभदायक सिद्ध हुयो है। कृषि प्रधान भारत रे पर्यावरण संतुलन में भी इनकी घनी भूमिका रही है। भारत री जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ पक्षियों रे लिए घनी चोखी साबित हुई है। इन्हें पक्षियों ने पक्षियारो स्वर्ग भी कहो जाया करे है। मोर, तितर, बटेर, कुआ, सिकरा, बाज, काली चिड़िया, एरगिद आदि किसाना रा हितेसी कहा जाया करे है। ए पक्षी खेता में बड़ी संख्या में कीटा ने मार जाए मार कर बांगो नाश कर दिया करे है। पक्षी केवल कीटा नहीं कोनी मारे, इनके अलावा भी बे अबावील, कंठ कोफड़ा, सारिका और भी कीट बक्षी पक्षी बहुत ही संख्या में हानिकारक कीटा को संहार भी कराया करे है। कोयल एक एड़ो पक्षी है जिको एक घंटे रे मायने लगभग 100 रोएदार जिल्लियां खा जाया करे है और दूसरे पक्षी ने भी खा जाया करे है। पक्षी अपने बच्चा री परवरिश रे दौरान बहुत बड़ी मात्रा में हानिकारक कीटारो सफायो भी कर दिया करे है। केवल कीट बक्षी पक्षी ही नहीं बल्कि सिस्किन, गोल्ड फ्रिंच, गुरैया और बया जैसा अनाज बक्षी पक्षी भी

0: मैं उत्पन्न पेड़ारी अपेक्षा यह पेड़ अत्यधिक हष्टपुष्ट भी होया करे है। पक्षिया रे उधर से होकर गुजरने वाला बीज अधिक सुगमता सु उपजया करया करे है। पक्षी फल वृक्षा रे बीजा रे विकरण में भी सहायक होया करे है। फल खाकर पक्षी इधर उधर जिका उड़े है। पर्यटन का शौकीन है पक्षी दूसरे प्रांता में एर देसारी यात्रा भी करया करे है। एर बठेरे फल वृक्षारी उत्पादन में भी घना साबित हुआ है। पक्षियारी वीट अचोखे किस्म री खाद रे रूप में भी काम में ले जाया करे है। एर कबूतरारी जी की वीट है बाबी खाद के रूप में घनी उपयोगी साबित हुई है। जीवन रोज को कोई भी एड़ो क्षेत्र को नहीं जिका में पक्षी मनुष्य रह सके नहीं बांगो साथ नहीं दियो होया करे है। वैज्ञानिक जिका लोग है वे सिद्ध कर दियो है कि पशु पक्षियां जिकी अंतर प्रेरणा जिकी है बा में बाबाड़ और भूकंप जैसा प्रकोप सु भी पूर्व अनुमान लगाया करे है। इस वास्ते भविष्य दृष्टा भी कहो है कि पक्षी है जिका मनुष्य रे लिए घना वरदान साबित हुआ है। वर्षा कम होगी या अधिक इंगो अनुमान भी अपने पक्षी के द्वारा पतो लाग जाया करे है। किसान भाई जिका विभिन्न प्रजाति रा पक्षी है वे खेता में बोई गई फसला में लगने वाला कीटारो सफायो करे है। खास बात तो आ है कि ए पक्षी खेता में केवल कीटांगो ही सफायो कौन करे बल्कि फसला में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया करे है। किसान रा मित्र इन पक्षियों में नीलकंठ है सारिका बगुलो आदि मुख्य होया करे है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आपने सुनी मुक्ता जैन की वार्ता। विषय था किसानों के मित्र पक्षी। आइए सुनते हैं लोक भजन।

0: रेलस्थानक उपप्रेषालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। आकाशवाणी स्वीय 90तमस्य वार्षिकोत्सवस्य अवसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं करिष्यति। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवनं, रेलभवनं, आरबीआई भवनं च गच्छति। आकाशवाण्याः, दूरदर्शनस्य, प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन क्रीडायां भागं ग्रहीष्यन्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। समय मिलाइए श्रोताओं, सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिन विशेष के साथ। आज का दिन विशेष कई मायनों में है। पहली बात, विश्व रेड क्रॉस दिवस है आज, और यूएन ग्लोबल सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत आज से हो रही है, यानी 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक ये सप्ताह चलेगा। पहले बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस की। जी हाँ श्रोताओं, 8 मई 2026 को आज शुक्रवार के दिन ये मनाया जा रहा है, और ये दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि रेड क्रॉस के नाम से ही हमारे मन में एक अलग भावना पैदा होती है, मानवता की सेवा, स्वयंसेवकों के योगदान और आपदाओं में सहायता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 8 मई 2026 को हम इस दिवस को मना रहे हैं, जिसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, चिकित्सा आपात स्थितियों या युद्ध जैसी स्थितियों में पीड़ितों की सहायता करने वाले स्वयंसेवकों और कर्मचारियों को सम्मानित करना। इस विषय का, इस बार का जो 2026 है उसका थीम है या विषय है, वो है मानवता को जीवित रखना। और श्रोताओं, आप और हम सभी जानते हैं कि मानवता को जीवित रखना कितना ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि सही समय पर मदद न मिलने से कई बार बहुत नुकसान हो जाता है, जान माल की इतनी क्षति हो जाती है कि शायद अगर सही समय पर सहायता मिलती तो उतना नहीं होता। इसीलिए हेनरी डुनेंट के जन्म के दिवस पर ये दिवस मनाया जाता है, और इसकी नींव 1863 में रखी गई। आप देखिए कि 1863 उस समय में भी मानवता की ये मिसाल उन्होंने कायम की कि किस प्रकार से हम लोगों की मदद कर सकते हैं और मानवीय सेवा का एक भाव अपने अंदर ला सकते हैं। क्योंकि सेवा भाव अगर आपके अंदर है तो आप उत्कृष्ट इंसान हैं। अगर सेवा भाव आपके अंदर नहीं है तो फिर आप किसी भी रूप में मदद नहीं कर सकते। लेकिन वही बात फिर से घूम करके आती है कि हम मनुष्य हैं, हमें जीवन में रहना है, आसपास हमारे बहुत लोग हैं, समाज है, दुनिया है, देश है, और अगर सेवा का भाव हमारे मन के अंदर नहीं होगा तो फिर हमारा काम कर पाना मुश्किल होगा। इसीलिए कहते हैं कि सेवा परमो धर्म, यानी कि सेवा अगर आप कर रहे हैं तो आपका जीवन बहुत सफल है। आप अपने मन में एक शांति ला सकते हैं सेवा के भाव के साथ। तो हाथ कदम से कदम मिला करके चलिए, हाथ से हाथ मिला करके चलिए, क्योंकि यही हाथ जब एक दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे तभी हम सेवा भाव से भी जुड़ पाएंगे।

खुशियाँ ही खुशियाँ हों दामन में अगर हमारे, तो फिर तो क्या ही बात है। हमारी ज़िंदगी खुशियों से रोशन रहे, यही हम सब दुआएं करते हैं। इस गीत के माध्यम से एक ये संदेश था कि शादी ब्याहों के मौसम में कितनी खुशियाँ होती हैं दूल्हे दुल्हन के लिए। हज़ारों आशीष होते हैं लोगों की, जो दुआएं हैं उनके साथ होती हैं। माता पिता जो हैं वो खुशी से पागल हो जाते हैं, भाई बहनों का तो कहना ही क्या है। और इन सभी चीज़ों में कई बार श्रोताओं हम सब भी जब इन शादी ब्याहों में शामिल होते हैं तो हम कई बार अपने आप को भी भूल जाते हैं और बे इंतहा मौज मस्ती करते हैं। और इसी मौज मस्ती के चक्कर में कई बार, इस खासकर इस गर्मी के मौसम में जब ये सब होता है, तो कई बार पानी की कमी होती है और कई बार खाने की बदपरहेजी हो जाती है, और इसी वजह से कई बार समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। छोटी मोटी समस्याओं की तो बात छोड़ता हूँ, हम आपसे करते ही रहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा अगर हम कहीं भी बाहर खाने जा रहे हैं तो लिमिट में ही खाना चाहिए, और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा तेल मसालों वाला भोजन हमें नहीं करना चाहिए। साथ में जो पानी पीने की मात्रा है उसको तो हमें बढ़ाना ही है। किसी भी रूप में हम तरल पेय पदार्थ ले सकते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। ये तो बात है श्रोताओं हमारे स्वास्थ्य की, कि हम किस प्रकार से छोटी छोटी समस्याओं से घिर जाते हैं, लेकिन कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि हमें हमारी जरा सी लापरवाही की वजह से बड़े नुकसान उठाने पड़ जाते हैं। और ये नुकसान तब उठाने पड़ जाते हैं जब हम खासकर सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। ये सड़क दुर्घटनाएं हमारे लिए बहुत दर्दनायक होती हैं, बहुत कष्टकारी होती हैं, और कई बार ऐसे घाव छोड़ जाती हैं कि जिनका भर पाना आजीवन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जी हाँ श्रोताओं, आज का दिन हम एक रूप में और मना रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में। आज का उद्देश्य है सड़क सुरक्षा, केवल सुरक्षा नहीं जीवन रक्षा भी होनी चाहिए। हम आप अपनी सुरक्षा के साथ चल रहे हैं, लेकिन सामने वाले के जीवन की रक्षा करना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। नियमों का पालन करना, सुरक्षित चलना, ये सभी हमारे जो सड़क सुरक्षा है इसके ऊपर लागू होते हैं। सड़क दुर्घटनाएं दुनिया भर में एक खामोश महामारी की तरह हैं, जो कि खासकर युवा वर्ग को इसका शिकार बनते हुए हमने देखा है। और ये युवा वर्ग जो समय सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी गति सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, और ऐसे में वो दुर्घटनाएं होती हैं जिसका दंश पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। दूसरे दशक की कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधा करना है। अगर हम कोई सा भी अखबार उठाते हैं, कोई सा भी न्यूज़ चैनल हम देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक न एक खबर तो हमें ऐसी मिलती ही है जिसके अंदर हम सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। और ऐसे में कितने ही हताहत होते हैं और कितने ही अपने जान से हाथ धो बैठते हैं, शायद उम्मीद करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है कि हम सभी केवल जागरूक ना हों, सुरक्षित घर भी पहुँचें। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम हेलमेट पहने, सीट बेल्ट का उपयोग करें, गति सीमा का पालन करें, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग न करें। अक्सर हमने देखा है

कि वाहन चलाते समय लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कान पर लगा के गर्दन टेढ़ी करके उस मोबाइल को चलाते रहते हैं, हाथ से मोबाइल पकड़े रहते हैं और एक हाथ से गाड़ी का हैंडल पकड़े रहते हैं। अगर कार में हैं तो मोबाइल सामने डैशबोर्ड पर रखा हुआ है और हम बातें कर रहे हैं। ऐसे में बातों से भी ध्यान भटकता है और कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना रहती है। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए भी सुरक्षित बुनियादी ढांचा है होना चाहिए, क्योंकि चलना उनका भी हक है और इसीलिए अगर हम लापरवाही से वाहन चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। सड़क सुरक्षा केवल नियमों की जानकारी नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का भी संकल्प है। तो आइए आप और हम सभी संकल्प लेते हैं कि जो भी सुरक्षा के नियम हैं उनका तो हम पालन करेंगे ही, लेकिन ये भी प्रयास करेंगे कि हम सभी अपने घर पर सुरक्षित पहुँचें, क्योंकि घर पर हम सभी का कोई ना कोई इंतज़ार तो कर ही रहा होता है।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: श्रोताओं, देखिए, हम सभी के लिए घर का होना बहुत जरूरी है। ये घर जो है, ये हमारे लिए एक छत का तो काम करता ही है, लेकिन हमारे अंदर जो मानसिक शांति है वो भी इसके माध्यम से हमें मिलती है। और इसी के लिए ग्रामीण आवास योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से अगर आप इसके इच्छुक हैं, अगर आप इसके पात्रता रखते हैं, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों में रहने वाले बेघर परिवार और जो लोग इसके पात्र हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की मजदूरी करने वाले लोग भी जो हैं, जिनके पास में मजदूर डायरी बनी हुई है, उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहायता दी जाती है। इसके साथ साथ शौचालयों के निर्माण के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन भी दिया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये जो योजना है, इसके माध्यम से वो सारी सहायताएँ आपको दी जा सकती हैं, अगर आप इसके पात्र हैं तो। आपको जो है आवेदन करना है, अगर आप ग्रामीण स्तर पर हैं तो अपने पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। नए लाभार्थियों का चयन, जियो टैगिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी हो चुकी है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप इसमें अपना भागीदारी बनाएं, और जिससे कि आपको एक पक्का घर मिल सके, आपके सर के ऊपर एक ऐसी छत हो जिससे टपकने का आपको कहीं कोई भी मलाल ना हो। इसके लिए मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपये और दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,30,000 की सहायता सरकार के द्वारा दी जा रही है।

जा रही है और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी मिल रही है। तो श्रोताओं, ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हम पात्र हैं या कोई भी पात्र है तो उस तक ये जानकारी पहुँचाना आपका और हमारा कार्य है। तो आइए जुड़ते हैं इस अभियान से, और आज के इस कार्यक्रम में अब आपको कहते हैं अलविदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का। ये ढोल अमारू चैनल है। समय मिलाइए श्रोताओं, इस समय सुबह के ठीक 7:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपने सुना। मुकेश, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर।

गीतकार योगेश का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम था मिली। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

ये आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की। फ़िल्म का नाम था नीला आकाश। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

खयाम के संगीत निर्देशन में मजरूह का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था मोहब्बत इसको कहते हैं।

लता मंगेशकर, आशय भोंसले और साथियों के गाए फिल्म पड़ोसन के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे

0: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि

0: और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख

0: बातों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: With that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। सौरभ कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ताकार सुनील गज्जानी की वार्ता, खेजड़ी मरुभोगरो कल्परूख।
2: खेजड़ी मरु भौमरी पिचाण है मरुथल वास्यारी प्राण, खेजड़ी रूरू सू सींचे सगला ने, पण खुद सिसके ओखे हालाता ने, बण्यो राज्य वृक्ष इत्तो है माण, सरदा राखो जे थे थोड़ी दियो काण। सनातन संस्कृति माए जठे प्रकृति रो जित्तो महत्व है, बित्तो ही रूखारो। आपरे जूने ग्रंथा माए रूखारो जसकान बाचण ने मिले, ऋषि मुनि सगला माए जंगला माए रैर ग्रंथ राचेड़ा है। इनरो कारण ओए कि जंगलारो मन हर तो चित्राम और अंतस चढ़े जिसो शांत वातावरण। बे आपरी उदर पूर्ति फल फूल सुई करता तो रूखरी डाली ने आपरी कलम बनावता, तो स्याई पुषप बिल्या रे रसू और पाना बनता रूखरी पात्या ज्या भोजपत्र। सनातन संस्कृति माए जितना महत्व रूखा ने मान्या है, बिताई पौधा ने पौधा जठे धर्म सु जुड़िया तो जड़ी बूटी सु भी। जड़ी बूटी यानी आयुर्वेद एक वैदिक मंत्र है। औषधस्य शांति वनस्पत्य शांति आयुर्वेद खातर महताऊ मंत्रा मायसु मंत्र है। जिनरे पेटे एक दीठ राखे रूख प्रकृति रो श्रृंगार, रूख जलवायु रो आधार, की रूख जिका अध्यात्म सु जुड़ियेड़ा तो आस्था सु भी होवे। पीपल बड़ तुलसी केलो कलम बेल चंदन नीम बे रूख है और इयारी महतारी कैनर बखान आवश्यकता कोने, जबकि शायद कैनरी अड़ी भी कोने। रूखरी आपरी महता है, हरेक रूखरी आपरी जलवायु हुए आपरी माटी हुए जिन माए बो पनपे। भारत रे सगले सगला प्रदेशारी आप आपरी जलवायु है, उनरी प्रकृति है। इन पेटे राजस्थान री शुष्क जलवायु पेटे, इन मई राता माता किसो रूख है तो सहसु पहली मगज माई नाम आवे वो है खेजड़ी। खेजड़ी मरु प्रदेश रो कल्प वृक्ष, खेजड़ी थार रेवास्यारी जीवन लीक, खेजड़ी मरुथल माई उगण नाली वनस्पतियां माई सु एक मेहताओं रूख। खेजड़ी जिकर वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया है तो वेद उपनिषदा माई समी नाम आवे। खेजड़ी दलहन कुड़बेरो एक फलीदार रूख है और ओइनी जे आपा इया कहो तो इया कह सका के इन रूखरों रूरों किनी ना किनी रूप माई मरुथल रे जीवा खातर नी फगत उपयोगी है बल्कि जीवनदाय भी है और इन खातिर इन खेजड़ी मरु बॉमरो कल्प वृक्ष मानी जाए। इनरा फूल मिमजर होए फलिया सांगरी और सांगरी सूख्या पचे खोखा हो जावे यानी मरुथल रो सूखो मेवो। खेजड़ी मरुभोम खेजड़ी ज्या मरुभोम माए जानटी नाम सु जानी जाए तो यही पंजाब हरियाणा माए जंड, दिल्ली रे आसे पासे जंती, सिंधी माए कजड़ी, गुजरीत माए गुजरात माए सुमरी, कर्नाटक तमिलनाडु माए बानी बन्नी या बाणी कही जाए। मीमोगैसी केडरो और रुख अफगानिस्तान संयुक्त अरब अमीरात माए भी उगे। संयुक्त अरब अमीरात माए जठे इंडरो राष्ट्रीय वृक्ष दर्जो है तो राजस्थान माए राजकीय रो। सदाबहार खेजड़ी भारत रे लगे टगे जठे शुष्क और नमी ऊनी जलवायु है, बठे बठे तो है ही जठे कमती सु कमती 100 से 115 सेंटीमीटर बिरखा हुए बठे भी है। इनरी ऊंचाई 1218 मीटर ताई हुए, उम्र सैकड़ों वर्ष मानी जाए। खेजड़ी मरुथल री एक सावठी ओलखाम, मरुथल री थाती जकी उकड़ते तावड़े माए काल माए सूखे माए लू बढ़ती भलाई किती यो। खेजड़ी पर्यावरण पेटे फसला पेटे चारे पेटे आपरो पूरो पूरो धर्म निभावे। जेठ जिसे महीने माए मूंगी छम रहवे और इन तपती लाए माए मिनखा जिनावरा ने आसरो देवे। खेजड़ी गुणारी अकूत खान भांत है जहाँ मरुभौम वीरारी भाव में उन्हीं बात मरुभौम एक इस इतिहासरी साखी है जिनरी मिसाल समूली दुनिया माए नी मिले के एक रूख खेजड़ी ने बचावन खातर 363 जना आपरे प्राणरी आहुति दे दी। ओ इतिहास जको आखो रहसी बो वर्ष 1787 माए मारवाड़ रे खेजड़ी गांव माए घटियो जब जोधपुर मारवाड़ रा महाराजा अभय सिंह मेहरानगढ़ महल माए निर्माण चालू करियो तो लकड़ियारी अड़ी हुई तो

आपरी मंत्री गिरधर भंडारी सेना ने लेर खेजरी ने बाढ़न लाग्यो तो इमरती देवी बिश्नोई उनरे सामी मंडगी अर काटन देवन खातर नी काटन देवन खातर पण सैनिक उनने तलवार सु बाढ़ नाकी फेर उनरी तीनू बेटियां भी रूखा रे खातर आपरा प्राण दे दिया। जद कालजो कंपाउंड वाली खबर आसे पासे रे 60 गांव तक पूगी तो 17 परिवार रा 294 मिनख और 65 लुगाया सैनिका रे सामी अड़ उबगी तो सैनिक उणा ने भी एक एक कर बाढ़ नाख्या। जद आ खबर महाराज रे पूगी तो सैनिका ने पूठो बुलाई लियो और फरमान जारी करियो कि मारवाड़ माई अब कदे खेजड़ी नी कटे। उन दिन भादवे सुदी दसम रही और उन दिन ने बलिदान दिवस रूप माई मनाई जाए और खेजड़ली गांव माई मेलो भरी जाए। खेजड़ली तुलसी जी ज्या पवित्र और शुभ मानी जाए और पूजी जाए। राजस्थान रा लोक देवता पीर जाहर मुख रूप सु वीर गोगा जी नागा रा सात देवता री आस्था खेजड़ी सु जुड़ी है। खेजड़ी मुरथल रेवासारी फगत जीवन रक्षक बल्कि इया कह सका हाँ कि इमरत ज्या है। इन रूखड़ेरी फलिया सांगरी जित्ती पौष्टिक हुए तो बित्ती ही स्वादिष्ट जक्की पेट ने ठंडक पुगावे। फलिया प्रोटीन युक्त और इनरी पत्तियां चरकास लेडी हुए जके रे कारण भेड़ बकरियारी चावी हुए। पत्तियां सूखे तो जठे चारो यानी लूंग बने तो खाद भी बन जावे। इन माई नाइट्रोजन री मात्रा 2.6 फास्फोरस री 0.4 पोटेशियम री 1.4 और कैल्शियम री मात्रा 2.4 होए। खेजड़ी पेटे आ भी निरी महताऊ बात है कि जद बरस 1899 माई जको 56 काल पड़ियो ई नाम सु इतिहास में दर्ज है उन भगत मान को जिंदो रेवन खातर खेजड़ी री छाल ने पीस उनरी रोटियां बनार खाओ तो इनरी छाल माए की मिठास होए। ओइनी छाल सु खांसी दमो बलगम जुकाम और पेट रे कीड़ा ने मारन री दवाया और भांत भांत री दवाया भी बनाई जाए। छाल माई पेटुलाट्रिन और सेकुन सुगंधदार लेकडोसाइड लादे खेजड़ी री जड़ा माई मरुस्थल रा और रेगिस्तान रे विकसाव ने रोके तो जड़ा इनने बांधेड़ी राखे रेगिस्तान विकसाव ने कि उनरो क्षण शरण नहीं हुए। खेजड़ी जकी मरुथल रेवासिया माए सांस्कृतिक धार्मिक आर्थिक आधार राखे बादवे सुदी दसम ने जठे खेजड़ली गांव माए मेलो भरीजे जकी अमरती देवी रे बलिदान री ओलू माए एक सांस्कृतिक परंपरा बनगी जिके माए खेजड़ी ने बचावन सारू पण लई जाए। धार्मिक महता माए ओ है कि वेदा पुराणा उपनिषदा माए इनने समी नाम सु जानी जाए। निरी जगह तो ओ रीत है कि दसरा और दिन रावण दहन पाछे घरे बावणता मिनखा समीरा पत्ता लूट लूट ले जावे जकी सोनेरी सेनानी मानी जाए। पुराणा माए ओ भी उल्लेख हुए कि पांडव आपर अज्ञातवास रे छेले बरसा माए आपरा गांडीव इनी माए लुकामता। इनी बात रो भी उल्लेख आवे कि लंका जीतन सु पहली भगवान श्री राम इन रूखरी पूजा करे। अबे जे खेजड़ी रे आर्थिक महत्वता री बात करा तो इन भांत डीठ राख सका कि उनाले माई मरुथल रेवासा रो एक आय रो साधन हुए। सांगरी रा भाव बाजार माई गुणवत्ता सारू हुए। निरे शोध पछे ओ कहिजो के चावे कित्ती लाय बरसे उन भगत सही रे ताप ने बरोबर राखण वासा सांगरी रो उपयोग करीजे और हुए भी है। सांगरी री सोच सारू एक दीठ है कि कितनी महताऊ आय के इन माई 8.15 प्रोटीन 40.15% कार्बोहाइड्रेट 8.15% 8.12% 203.3% 0.5% तक कैल्शियम 0.3% तक आयरन और इनरे अलगा और भी का अवयव इनरे माई लादे जका शरीर वास्ता गुणकारी हुए। खेजड़ी री जड़ा माई राइबोजियम जीवाणु हुए जिका कारण के आपियाप नाइट्रोजन बनाती रहे। खेजड़ी हेठे फसल चोखी ही पनपे इन माए सु जको गूंद हापी कड़े उनरी जिती इनरी देसी दवाया बनरी महत बने और वित्तीय व्यापारिक रूप सु भी महताऊ हुए। आज आखे जग माए पर्यावरण माथे संकट है। इन पेटे इनसु समूले जग माए पर्यावरण पेटे फंफन लाग रियो है। इनसु खेजड़ी भी अलगी नी है। खेजड़ी वास दो ही तरफा हमलो हुए एक तो रूख सारू और बीजी फली यानी सांगरी सारू। किसाना रो मानना है कि पहला खेता माए खेजड़ी बेथाक होया करती है और इनरे कारण खेत माए जुताई करण माए दूर पहुंती तो आपरी सौरभ वास्ता जुताई रे बिताले

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपने सुनी अनूप जलोटा की गाई ये कबीर वाणी। अगली प्रस्तुति रामकृष्ण चंद्रेश्री और साथियों की।

0: मुख्य समाचार। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग तीन गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से शुरू हुए दो दिन के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर विचार विमर्श किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। जयपुर सैन्य स्टेशन में हो रहे इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। इस फिल्म में आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किए जाने की पाकिस्तान की नीति को उजागर किया गया है। वहीं 26/11 मुंबई हमलों और पहलगाम आतंकी हमलों की घटनाओं को दिखाया गया है। सम्मेलन के पहले दिन भविष्य की युद्ध अवधारणाओं पर नए सिद्धांत भी जारी किए गए। वहीं आज रक्षा मंत्री सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें भविष्य की युद्ध रणनीतियों और तीनों सेनाओं की संयुक्तता तथा तालमेल को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। साथ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण और नागरिक सैन्य सहयोग पर विमर्श किया जाएगा। इसमें थिएटर कमान के गठन की भी समीक्षा की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल सीकर जिले के खंडेला में ग्राम विकास चौपाल लगाई। जाजोद गांव में लगी इस चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से ही देश और प्रदेश मजबूत बनेगा। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने किसानों से फलों की खेती और नवाचार करने के बारे में भी चर्चा की।
2: हमको फलों की खेती भी करनी चाहिए क्योंकि अनुभव होता है फलों की, जब खेती हम करते हैं तो एक प्रफुल्लता भी आती है मन में। आपने आम का पेड़ लगाया है, आम फल दे रहा है, तो आप कहीं भी रिश्तेदारी में भेजोगे तो कहोगे ये मेरा खेत का आम है। तो आपको 10-20-50 पेड़ हर किसान को अपने फलों के लगाने चाहिए जिससे कि वो ये महसूस करे कि ये फल तो मेरे घर का है, तो ये भी मैं आपसे, तो पर्यावरण भी बचेगा और हमारा फल भी पैदा होगा। हमको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष भी हमें लगाना चाहिए।
0: राजस्थान को कृषि नवाचार और खेती की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनाने के लिए जयपुर में 23 मई से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले एग्री बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक में निवेश के लिए कृषि विभाग की ओर से देश के विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हैदराबाद में ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल तथा पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का भी इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। ग्राम 2026 से किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

0: की जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सांचौर के चितलवाना में कहा कि इस अभियान में सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही पात्र लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है।
1: अपने विकास के कार्यों को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, किस तरीके से जमीन तक जागरूकता और बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं उनको और प्रभावी रूप से नीचे तक पहुंचा सके।
0: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कथित फर्जी बीमा क्लेम का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कल एसबीआई पल्लू शाखा में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 162 फर्जी किसानों के नाम पर बीमा करने का खुलासा किया। गौरतलब है कि कृषि मंत्री के हस्तक्षेप से करोड़ों रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी होने से पहले ही रोक दी गई। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ रुपए की बीमा भुगतान राशि को समय रहते ही रोक दिया गया।
2: जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काट लिया और क्लेम कैसे बना दिया? बिना जमाबंदी बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा करा के क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था उससे पहले हमारी जानकारी में आ गया। इस चक्र में कोई भूमि नहीं है, जितने भी नाम है ना 162 किसानों के, इनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। ये है बजरू तेजपुरा गजनेर तहसील।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से देश में खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। सवाई माधोपुर, वनस्थली, जालौर और दौसा सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। टोंक, करौली और कोटपुतली बहरोड में ओले भी गिरे। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, किंतु अधिकतर स्थानों पर तेज धूप और उमस से लोग परेशान रहे। भरतपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं और सुबह से ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। वहीं सवाई माधोपुर में देर शाम धूल भरी हवाएं चलने से यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर में फिर से प्रचंड गर्मी का असर शुरू हो गया है। जैसलमेर में कल दिन का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया, वहीं 15 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में अब कमी होने की संभावना है। इससे अगले 3-4 दिन में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सीमावर्ती जिलों में हीट वेव का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज और कल कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के पुलिस बेड़े में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिलों, पुलिस आयुक्तालय, एसीबी, सीआईडीसीबी, ट्रैफिक और महिला अपराध अनुसंधान सेल में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग 3 गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

ममता सिंह के स्वर में आपने ये लोकगीत सुना। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिलाइए श्रोताओं, सुबह के ठीक 9:15 हुए हैं और अब समय है कार्यक्रम गांधी चर्चा का। आज का विषय है हत्या का अभिशाप। वाचक स्वर चंद्रशेखर जोशी का, प्रस्तुति रेवंत राम लेघा की और संयोजक हैं अमित सिंह।

नमस्कार, गांधी चर्चा में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में सुनिए हत्या का अभिशाप विषय पर गांधी जी के विचार। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक श्री सैंडर्स की हत्या इस बात को अलग रखकर भी कि उसके मूल में कोई राजनैतिक हेतु था कि नहीं, मेरी राय में एक बुजदिली का कृत्य हुआ। जबकि देश के वायुमंडल में हिंसा भरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि लोग इस कृत्य को मन ही मन पसंद करेंगे। और यदि इस खून का कुछ संबंध स्वर्गीय लालाजी और उनके बिल्कुल निर्दोष साथियों पर हुए हमले से पाया गया, तब तो ये बात और भी ठीक समझी जाएगी। उस हमले के कारण लोगों में उत्तेजना तो पहले ही से थी, पर लालाजी की मृत्यु से वो दुनी हो गई। पुलिस के उस आक्रमण से उनके दिल पर गहरा धक्का पहुंचा था और निःसंदेह उसके कारण उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो गई। कुछ लोग तो यहाँ तक कहेंगे कि लालाजी की मृत्यु उनकी छाती पर लगी चोट के कारण हुई है, और उनका ऐसा मानना बहुत हद तक ठीक भी हो सकता है। फिर पंजाब सरकार ने पुलिस की उस करतूत की जो हिमायत की, उससे लोग और भी उत्तेजित हो उठे थे। ऐसी दशा में यदि ये साबित हो कि ये खून पंजाब सरकार की अत्याचार पूर्ण नीति का बदला लेने के लिए किया गया है, तो मुझे आश्चर्य न होगा। बापू कहते हैं कि पर मैं चाहता हूं कि यदि जोशीली तरुणाई को ये समझाया जा सकता है कि ऐसा बदला बिल्कुल ही निरर्थक बात है, तो अच्छा होता। सहायक अधीक्षक ने जो कुछ किया था वो तो हुक्म की तामील भर थी। उस हमले के लिए अथवा उसके बाद ऐसी और कोई कार्यवाही हो रही है, उसके लिए कोई एक आदमी पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ये दोष तो शासन पद्धति का है। इसके लिए व्यक्तियों को सुधारने की नहीं बल्कि पद्धति को सुधारने की जरूरत है। और जब देश के नवयुवक इस विषय में पक्का और सच्चा निश्चय कर लेंगे, तब वे देखेंगे कि इस पद्धति को मिटा देना जितनी उनके हाथ की बात है, उतनी और किसी के हाथ की नहीं। गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजी पुस्तकों ने हमें चोरों, डाकुओं, बदमाशों और रेलगाड़ियां उलटने वालों के कृत्यों को वीरता समझकर उनकी स्तुति करना सिखा दिया है। अखबारों के स्तंभ ऐसी जोशीली वास्तविक घटनाओं अथवा उनके अभाव में ऐसे कार्यों की कल्पित कथाओं से भरे रहते हैं, और कुछ लोग तो किसी भी साहसपूर्ण कार्य को, फिर वो किसी भी हेतु से क्यों न किया गया हो अथवा उसका नतीजा कुछ भी क्यों न निकला हो, बड़ी बहादुरी का कार्य समझकर उनकी स्तुति करने की विधा में बड़े निपुण भी हो गए हैं। बापू कहते हैं कि इसे अशुभ लक्षण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई निरपराध धनी पुरुष तीर्थ यात्रा के लिए निकला हो और दान देने के लिए अपने साथ पर्याप्त धन लेकर चला हो, और यदि उसे कोई जाकर लूट ले और फिर उसका खून कर डाले, तो इसको बहादुरी नहीं कह सकते। इसी तरह छिपकर उस निरपराध पुलिस अफसर का खून करने में भी कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि वो अफसर तो अपना फर्ज अदा कर रहा था। भले ही उसका ये कार्य खून करने वालों की जाति के लिए कितना ही बुरा साबित क्यों न हो, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पहले भी ऐसे कितने ही खून किए गए हैं, फिर भी हमारे वर्तमान शासक गण अपनी शासन पद्धति जारी रखने में सफल हो ही रहे हैं। और ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण का इतिहास भी क्या ऐसी शूरवीरता, साहस और इससे अच्छे कामों

किए गए बलिदानों से खाली है? यदि हम श्री सैंडर्स के इस खून को कोई बहादुरी का काम माने तो अंग्रेज लोग, मेरा ख्याल है, इसके जवाब में एक नहीं सैकड़ों ऐसे बहादुरी के कार्य करके दिखा सकते हैं। पर मेरी राय में वो समय आ गया है जब हम अपनी अपनी जातियों या राष्ट्र के भेदों को छोड़कर ऐसे कार्यों पर, फिर चाहे वे कितने ही साहस के हों, पर जो संकीर्ण मनोवृत्ति से किए गए हों अथवा जिनका फल और भी संकीर्ण निकला हो, दुखित हृदय से घृणा और नापसंदगी प्रकट करें। हाँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा करने के मानी होंगे बहादुरी, देशभक्ति, धार्मिकता तथा ऐसे ही दूसरे शब्दों को नए मूल्य देना। मेरा ख्याल है कि राष्ट्रपति क्लीवलैंड और कार्नोट के खून के लिए कोई आदमी उन खूनियों को भला नहीं कह सकता और न उन राष्ट्रों की बड़ाई कर सकता है जिनके हित के लिए उन पागल व्यक्तियों ने ये बुरे काम किए। बापू कहते हैं कि सच तो ये है कि खून तथा इससे मिलते जुलते दूसरे दुष्कृतियों के कलंक से मनुष्य जाति, धर्म और सच्ची सभ्यता किसी की वृद्धि नहीं होती। बापू के अनुसार भारतवर्ष के नवयुवकों को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि लाला जी की मृत्यु का बदला भारत को आजादी दिलाकर ही चुकाया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्रता एक आदमी के सच्ची वीरता के कार्यों से भी कभी नहीं मिल सकती, फिर नाम मात्र की वीरता की तो बात ही क्या। स्वतंत्रता देवी के मंदिर के लिए हजारों लाखों नर नारियों और युवा वृद्धों के धैर्य और बुद्धि से युक्त रचनात्मक उद्योगों की आवश्यकता है। ऐसे कार्य जिनकी कि हम आज निंदा कर रहे हैं, शांत रचनात्मक कार्यों की प्रगति को निश्चित रूप से पीछे हटाते हैं। और कुछ नहीं तो वो उन असंख्य निर्माण कार्य में लगे रहने वालों के चित्त में उद्वेग और विक्षोभ तो अवश्य ही उत्पन्न कर देते हैं। ये थे हत्या का अभिशाप विषय पर गांधी जी के विचार। आइए अब सुनते हैं एक भक्ति रचना।

अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी चर्चा, विषय था हत्या का अभिशाप। वाचक स्वर चंद्रशेखर जोशी का, प्रस्तुति रेवंत राम लेखा की, और संयोजक थे अमित सिंह। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। आज आप इसकी 1280वीं कड़ी सुनेंगे।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी बिमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
0: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
2: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
2: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। अब मालूम है इसका

0: दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी, समुद्र की गहराई के तीन भाग हैं। सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं। यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र। यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र। यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800-440-5559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।

0: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
1: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब।

0: सीतारामा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी।

0: यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं

0: 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि

0: मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रोग्राम उमंग। आज आपने इसकी 1280वीं कड़ी सुनी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। समय मिलाइए श्रोताओं, सुबह के ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये आवाज़ थी मोहन कनन की और फिल्म का नाम था क्वीन। गीत को लिखा था अन्विता दत्त ने और संगीत अमित त्रिवेदी का था। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत आप सुनेंगे, सिद्धार्थ महादेवन, सुकृति कक्कड़ और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दिल धड़कने दो।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।

शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल,

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, अरिजीत सिंह, प्रकृति कक्कड़, अमाल मलिक और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सोनू के टीटू की स्वीटी।

एआर रहमान के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत आपने सुना, बेला शिंदे की आवाज़ में। फिल्म का नाम था जोधा अकबर। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

0: ये आवाज़ थी कविता सेठ की और फिल्म का नाम था नीरजा। गीत को लिखा था प्रशून जोशी ने और संगीत विशाल खुराना का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: अभिजीत की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम था जोश। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में कौसर मुनीर का लिखा गीत आपने सुना, हीरोपंती फिल्म से। आवाज़ थी मोहित चौहान की।

यंगिस्तान, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और आइए अब कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अजय गोगेवाला के साथ धड़क फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अजय अतुल का।

धड़क फिल्म का ये गीत आपने सुना अजय गोगेवाला के स्वर में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत आप सुनेंगे। मनाडे और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है श्री 420।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए आरटी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, गीत को गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आप सुनिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने और फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

मजरू सुल्तानपुरी के संगीत, माफ कीजिएगा, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत दिया था मदन मोहन ने। गीत को गाया था लता मंगेशकर ने और फिल्म थी चिराग। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म नागिन का ये गीत। गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में अभी आपने सुना फिल्म कभी कभी का ये गीत। गीत को लिखा था शाहिर ने, संगीत खयाम का था। भूले बिसरे गीत में आप सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म आशिक का ये गीत। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था हर्षद जयपुरी ने, गीत को गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, माफ कीजिएगा लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म का नाम था राजहट। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वर में फिल्म छाया का ये गीत। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत शलिल चौधरी का।

यशोदास की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म संपर्क का ये गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का आखिरी गीत सुनिए। गीत को गाया है किशोर कुमार ने, फिल्म का नाम है जमीन। गीत को लिखा है शाहिर लुधियानवी ने, संगीत शपन चक्रवर्ती का।

0: तलत महमूद के गाय फिल्म सुजाता फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर दिन के 12 बज रहे हैं। अब आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
1: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत

0: की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हों। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारे सभा में दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत, समय रहेगा दिन में 1:05। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंधविश्वास पर नहीं विज्ञान पर भरोसा करें, सेहत के लिए फायदेमंद होममेड पेय पदार्थ। साथ ही आप सुनेंगे फिट परिवार से बनता है फिट इंडिया। हमारी ये सभा दिन में 3:00 संपन्न होगी।

हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा ताजी हवा स्वास्थ्य का राज। लघु जानकारी के विषय रहेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, बार्क और ओपेक। साथ ही आप सुनेंगे रोजगार समाचार और आखिर में क्वेस्ट टाइम। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से संध्या 6:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण होगा संध्या 7 बजे। चर्चा के

विषय रहेंगे, खेती व पशुपालन में एआई का आगमन, वन्य जीव जंतुओं तथा पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। साथ ही आप सुनेंगे बढ़ते तापमान में पशुधन की देखभाल कैसे करें।

संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और लोक संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:30। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर वेटनरी ऑडिटोरियम बीकानेर में आकाशवाणी बीकानेर द्वारा आयोजित शास्त्रीय संगीत संध्या सितार और सरोद पर जुगलबंदी। कलाकार असित गोस्वामी, अमित गोस्वामी, तबले पर संगत शब्बीर हुसैन कलावंत की और सहभागिता कविता वर्मा की, तकनीकी प्रभारी गिरधारी राम बाटन, तकनीकी सहयोग पुरुषोत्तम संजय गौड़, सुरेश गहलोत, आलोक साहनी और मुकुल भटनागर, ओबी प्रभारी मीनाक्षी मल्लिक, प्रस्तुति बरखा थानवी व्यास और रेवंत राम लेगा और संयोजन श्री अमित सिंह का होगा।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के हमारे आज के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। आइए सुनते हैं इनकी गाई कुछ गजलें।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर दिन के 12:40 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, फिल्म का नाम है बाजार।

0: अरिजीत सिंह के गाए फिल्म राज रिबूट के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: अमीर चैनल से बोल रहे हैं, दिन के एक बजे हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में आज चौथी इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। राज्य में कृषि, बागवानी और एग्री बिजनेस के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। 23 मई से जयपुर में होने वाली ग्राम 2026 के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद के बाद ये चौथी प्रमुख इन्वेस्टर मीट है। इसमें राजस्थान को एग्री हब बनाने और खेती के लिए नई तकनीक लाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जयपुर सहित प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक सीजी संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल में समुचित अग्निशमन प्रणाली नहीं पाई जाती है तो संबंधित सीएमएचओ की ओर से तय टाइमलाइन के साथ उस अस्पताल को नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रदेश के हर अस्पताल में नियमित रूप से फायर ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया इस साल अगस्त महीने में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल एक समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 40 साल पुरानी यात्री आरक्षण प्रणाली को नई प्रणाली में बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसके तहत पिछले साल जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ये नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपना

0: हटाने के लिए एक समझौता किया है। नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी एआई के जिम्मेदार और व्यापक प्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान एआई समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ लेंगे। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक वीडियो को फर्जी बताया है। इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में 4 राफेल विमान खो दिए। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो एआई से बनाया गया एक डीप फेक है और इसे पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट की ओर से गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से इस तरह की सामग्री पर विश्वास नहीं करने और हमेशा सरकारी स्रोतों से इसकी पुष्टि करने का आग्रह किया है। इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगाई जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इनमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, मोटरयान दुर्घटना, चेक बाउंस, बैंक ऋण और घरेलू विवादों सहित अन्य राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इसके लिए प्रदेश में भी योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग शिविर रखा गया। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया गया, साथ ही उन्हें दिनचर्या में नियमित रूप से योग को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस साल की थीम मानवता में एकता रखी गई है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध और हर आपदा के समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हैं मनोज खंगारोत और किरण शर्मा।

0: महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को किरण शर्मा और
1: मनोज खंगारोद का प्यार भरा नमस्कार।
0: मनोज, हम बहुत सी बातें और चर्चाएं करते हैं, पर अगर हम इंसानों की बात करें ना, तो उनमें मानवता का होना कितना जरूरी है ना।
1: बिल्कुल सही कह रही हो किरण। देखो, आज के समय में जहाँ स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ती जा रही है, तब मानवता का जो महत्व है ना किरण, वो और भी बढ़ जाता है।
0: हाँ बिल्कुल मनोज, मानवता हमें प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग का संदेश देती है ना।
1: बिल्कुल, और किरण हम आज जिस संस्था की बात करने वाले हैं ना, वो भी मानवता पर ही तो आधारित है, जिसका आज हम दिवस मना रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और हाँ बहनों, आज हम मना रहे हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसकी 2026 की थीम है यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी।
1: बिल्कुल,
0: और इसका अर्थ है मानवता के लिए एकजुट होकर लोगों की सहायता करना।
1: यह

0: उन स्वयंसेवकों और कर्मचारियों को सम्मान देती है जो संकट के समय लोगों की मदद करते हैं। बहनों, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन मानवता, करुणा और सेवा की भावना को समर्पित है। रेड क्रॉस एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आपदा, युद्ध, महामारी या किसी भी प्रकार के संकट की जो स्थिति होती है उसमें मदद करती है।
1: बिल्कुल मनोज, और विश्व रेड क्रॉस 2025 की क्या थीम थी पता है मनोज? थी मानवता को जीवित रखना।
0: बिल्कुल,
1: ये विषय उन लाखों रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट समय सेवक जो थे उनकी निस्वार्थ सेवा को शामिल करता है।
0: बिल्कुल,
1: जो हर उस स्थान पर राहत पहुंचाते हैं जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जैसे युद्ध क्षेत्र में घायल जो व्यक्ति है उनके लिए, या फिर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जो क्षेत्र है ना उसमें, या फिर शैक्षणिक जो शिविर लगते हैं वहां पर ये स्वयं सेवक है बिना किसी भेदभाव के करुणा और पूरी तटस्थता के साथ मानवता की सेवा करते हैं।
0: बिल्कुल, मानवता को जीवित रखें एक ऐसा संदेश है जो आज के समय में बेहद कम हो गया है, जहां संघर्ष, स्वास्थ्य संकट और सामाजिक विषमताएं जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जो मानवता है, मानव का मानव के प्रति जो प्रेम कह सकते हैं हम, वो लगता है मानो कहीं पीछे छूट रहा है। यह विषय हमें मानवता की रक्षा करने की आवश्यकता का स्मरण कराता है और रेड क्रॉस एक शक्ति का प्रतीक बनता है जो शक्ति, दया और आशा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करती है।
1: बिल्कुल मनोज, जहाँ मानवता को जीवित रखने की बात है ना, तो अक्सर हम देखते हैं कि आजकल कई बार रोड एक्सीडेंट हमने देखे हैं जहाँ पर हमें दिखता है वीडियोस में कि लोग है वीडियो बनाने लग जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: मदद जहाँ जरूरी है, बिल्कुल
1: कहीं ना कहीं मानवता का हास
0: हो रहा है। बिल्कुल,
1: तो इसलिए ये दिवस मनाना और भी ज्यादा जरूरी है कि कम से कम लोगों में इतनी तो मानवता हो कि जो घायल व्यक्ति है उसको जल्द से जल्द जो चिकित्सा है वो पहुंचाई जाए। नहीं,
0: बिल्कुल किरण जी, एक चीज और कहूंगी, जैसे ये दिवस तो हम चलो साल में एक बार मना रहे हैं, लेकिन ये जो मानवता की जो कह सकते हैं जरूरत है, ये हर दिन, हर समय, हर पल, हर घड़ी
1: बिल्कुल
0: इसकी जरूरत होती
1: है। और हर क्षेत्र में,
0: हर क्षेत्र में,
1: परिवार हो चाहे मतलब समाज हो चाहे देश हो, तो ये जो मानवता है ना वो अगर सब में होगी तो कभी कहीं किसी भी स्थिति में हमारा देश पीछे
0: नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब ये जो रेड क्रॉस है ना, देखो किरण जी, इसके सात मूल सिद्धांतों पे ये काम करता है, या यूं कहें कि इसके सात मूल सिद्धांत है। फर्स्ट, मानवता है। इसके अलावा निष्पक्षता है, यानी कोई भेदभाव नहीं करना है। तटस्थता है, स्वतंत्रता है, स्वैच्छिक सेवा है, एकता है, और एक चीज और सार्वभौमिकता भी इसके अंदर है। एक गांधी जी की कही हुई एक बात बताऊं मैं किरण जी आपको, कि गांधी जी ने हमेशा कहते थे वो, या उन्होंने हमेशा कहा है कि स्वयं को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना। यदि आप कहते हैं ना निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की सेवा में लग जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपने असली मायने में खुद को पा लिया है।
1: बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि हम धन कमा सकते हैं, धन से वो सुख नहीं कमा सकते जो मानवता की रक्षा के लिए हम जो कार्य करते हैं उससे जो सुख मिलता है।
0: कई बार हम हमारे जीवन में ये चीज महसूस भी तो करते हैं किरण जी, जब हम किसी प्यासे पक्षी को पानी भी पिला देते हैं, किसी प्यासे जानवर को अगर हम पानी पिला देते हैं, और पानी पीने के बाद उस जानवर, उस पक्षी के चेहरे पे जो हम तृप्तता देखते हैं, उससे हमें कितना सुकून मिलता है कि नहीं?
1: बिल्कुल। तो मनोज, मैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक थोड़ा सा वाक्य बताना चाहूंगी कि ना, जैसे पक्षी की बात की ना, तो मेरे पिताजी कि एक बात मुझे याद आती है कि एक बार वो अभी थोड़े दिन पहले यहाँ आए मेरे घर, तो मैंने कहा पापा आज मेरे साथ रुक जाओ, रात रात यहीं रुक जाओ। बहुत इच्छा होती है बच्चों की कि आप उनके साथ रहो, तो पापा ने कहा बेटा इच्छा तो मेरी भी है रुकने की, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। मैंने कहा पापा ऐसी क्या बात है कि आप रुक नहीं सकते, कि बेटा हजारों पक्षी मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो पता है वो देशनो के क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ ओरण है, भूमि है, गोचर भूमि है, वहां पर वो काफी दूर तक जाते हैं, वीरान जगह जहाँ धोरे हैं वहां पर वो जाके मिट्टी के सकोरों में पानी भरते हैं, पेड़ों को पानी देते हैं। तो उनसे इतने ज्यादा पक्षी जुड़ गए मनोज कि ना जब उनके जाने का टाइम होता है ना, वहाँ जैसे 4:30 तक पहुंच जाते हैं, वो 5 बजाते हैं वहाँ, 7 वहीं बजाते हैं वो उनके ही इर्द गिर्द। तो आप मानोगे नहीं, 15 मिनट के लिए पक्षियों, हजारों पक्षियों का झुंड वहाँ इकट्ठा हो जाता है।
0: मतलब मानवता की इससे बड़ी और इससे बड़ा और क्या उदाहरण दिया जा सकता है? आप किरण जी अपने पापा की बात बता रहे हो और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे रोंगटे

0: सिर्फ बातें सुन के ही हो रहे हैं कि कितना पुण्य उन्होंने कमाया है ये करके,
1: और पता है कितनी खुशी उन्होंने कमाई है। कभी पापा को रोकती नहीं हूँ, क्योंकि है ना उनकी आंखें उनको नजर आती है कि वो पक्षी इतने इंतजार
0: उड़ीक रहे हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल छोड़ने आता है, कुत्ता उनको उनके साथ आता है काफी दूर तक, तो वो बहुत से जो प्राणी हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो हमसे ज्यादा प्यार शायद वो उनको करते हैं।
0: तो देखिए सखियों, किरण जी के पापा से ना सिर्फ किरण जी को बल्कि हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, और ऐसी ही मानवता की राह पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अपने बच्चों को भी। ये जो मैं आप किरण जी आज ये घर जाके ये कहानी मैं मेरे बेटे को जरूर सुनाने वाली हूँ कि कैसे मानवता के धर्म को बहुत ही निस्वार्थ भाव से, बहुत ही सरलता से निभाया जाता है, इसके लिए कोई भारी भरकम प्रयासों की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अब बातें तो हमारी चलती रहेंगी, फिलहाल बहनों को संगीत की दुनिया में लिए चलते हैं, ये भी हमारा महत्वपूर्ण कर्म है।
1: बिल्कुल।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, यही जीवन का असली रतन है। ना सोना, ना चांदी, ना महल दुकान, तंदुरुस्ती से ही बनती है अपनी पहचान।
1: बिल्कुल मनोज, सुबह की दौड़ हल्की कसरत देती तन को नई ताकत, फिट शरीर खुशहाल मन, यही है जीवन का सच्चा धन। तो चलो आज से ही ये ठान ले, स्वस्थ जीवन को पहचान ले।
0: बिल्कुल बहनों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। एक बारगी किरण जी, अगर हमारी कोई चीज हमसे खो जाए या छिन जाए तो उसे दोबारा से पाया जा सकता है, उसे दोबारा से कमाया जा सकता है, पर जो गिरता स्वास्थ्य है उसको संभालना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहनों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बीमार होने से पहले ही हमें सचेत होना पड़ेगा
1: और समय रहते स्वास्थ्य से संबंधित सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे समय पर उठना, सोना, खाना पीना, व्यायाम, योग आदि, है ना, जो समय पर, उनका जो समय है ना वो निर्धारित करें।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कई बार होता है ना कि हम भाग दौड़ के चक्कर में जो हमारी दिनचर्या है व्यस्त होती है तो हम व्यायाम को स्किप कर देते हैं कि रहने दो, कोई बात नहीं है, कभी और कर लेंगे या कल कर लेंगे।
0: खासकर हम महिलाएं
1: बिल्कुल,
0: हमें उठते ही घर के जो कामकाज होते हैं उनको करने की जल्दी होती है, हमें यूं लगता है कि ये काम ना छूट जाए, बच्चों को स्कूल, टिफिन, ये वो, और इस चक्कर में हम खुद को कितना पीछे छोड़ देते हैं हमें पता ही नहीं चलता।
1: बिल्कुल बहनों, स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव होती है, इसलिए जरूरी है आपका समय रहते सचेत होना। नहीं
0: मनोज, सही कह रही हो। जब परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी तो एक मजबूत और प्रगतिशील भारत का निर्माण संभव हो पाएगा।
1: बिल्कुल मनोज, और फिर परिवार का अर्थ केवल बीमारी से दूर रहना, फिट परिवार का अर्थ बीमारी से दूर रहना नहीं है, बल्कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग,

0: खेलकूद और सकारात्मक सोच को जीवन का हिस्सा बनाना है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। हम कई बार किरण जी जैसे चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी चर्चा इतनी ही होके रह जाती है कि हमें पौष्टिक खाना खाना है, हमें व्यायाम करना है, कहने का मतलब हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। पर बहनों, असली स्वास्थ्य का या कहें परिपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब होता है कि शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी व्यक्ति का अंदर से भी स्वस्थ होना। हम बाहर से हष्ट पुष्ट दिख रहे हैं, सुंदर सुडौल दिख रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन टूटा पड़ा है, हमारा मन बिखरा पड़ा है, तो जो स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं शायद वो कहीं ना कहीं अधूरा है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो इसके लिए पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और जहाँ ऊपर ही सुंदरता की बात करी ना, तो हम महिलाओं की आदत होती है कि कई बार हम प्रोग्राम्स में जाती हैं तो आधा घंटा तैयार होने में लगा,
1: सही कह रही हो,
0: मेकअप में लगाती है, तो इतना वर्क अगर हम अंदर की आंतरिक सेहत के लिए
1: करें
0: तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा।
1: सही चीज
0: कि है ना, जैसे हम किसी भी प्रोग्राम में हमें जाना है तो पहले ही दिन अगर हम ऐसा कुछ करें जिससे हम अगले दिन के लिए स्वस्थ रह सके, जैसे नारियल पानी पीना है, नहीं पानी भरपूर पीना है, या फिर कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करें जो हमारी बाहरी परत को तो सुंदर करे ही प्लस आंतरिक रूप से हमें।
1: और एक बहुत ही इसके साथ साथ किरण जी, हम ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ, एक बहुत ही कह सकते हैं सुविचार के साथ हम कहीं बाहर जाएं, सबसे मिलें, ताकि हमारा ये जो सकारात्मक जो रवैया है ये सामने वाले को भी सकारात्मक बनाए, चाहे वो टूटा हो, हमें देखकर वो खुश हो जाए, हमें देखकर उसे एक एक नई राह समझ आ जाए, तो ये कितना अच्छा होगा।
0: बिल्कुल, मैं समझ गई कि आपका कहने का मतलब है कि सुबह हम टहलने जाए जिससे हमारी बहुत सी सखियां बनेगी, तो वो खुशी मिलेगी, वो तो अलग है, प्लस हमें
1: लाभ भी होंगे,
0: लाभ होगा और हमें जीवन की एक अलग दिशा भी मिलेगी।
1: सही बात
0: कि
1: है।
0: अपना और वो सखियों में इतना अच्छी मतलब बॉन्डिंग हो जाएगी कि हम छोटी से छोटी बात उनसे शेयर कर पाएंगे, तो मन भी हल्का होगा, जिससे मन से खुश रहेंगे, बाहर से तो होना ही है
1: आम कि अगर, के आम गुठलियों के भी दाम,
0: और हम हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो ऊपरी ग्लो भी पूरा आएगा।
1: बिल्कुल। इसके साथ साथ किरण जी, एक चीज और की जा सकती है कि हमेशा बड़ा बन के रहना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं,
0: नहीं,
1: माना
0: नहीं
1: जाता। कभी कभी हमें बच्चों संग बच्चा भी
0: बच्चा
1: बन
0: जाना चाहिए।
1: घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो हमें उनके साथ उनके जो खेल हैं जो उन्हें खुश करते हैं, छुपन छुपाई या जो हम बच्चपन में खेला करते थे, बहुत से खेल हैं, हमें बच्चों संग वो खेल खेलने, इससे बच्चा खुश भी रहेगा, बच्चा तंदुरुस्त भी रहेगा, साथ साथ हम जो उनके साथ भाग दौड़ उछल कूद करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा व्यायाम हमारा भी हो जाएगा। है कि नहीं है? और तो ये जो चीजें हैं ये हमें ऊर्जावान बनाती हैं। किरण जी, इसके अलावा देखो, आज की जो भागदौड़ भरी जीवन शैली है ना, इसमें अगर कहूँ कि मोबाइल और जो टीवी है या इस तरह के जो गैजेट्स हैं, इन्होंने हमारी जो शारीरिक गतिविधियां हैं ना, इनको लगभग ठप सा कर दिया, इनको लगभग बंद सा कर दिया है। दिन भर हम बाहर, पहले एक समय होता था जब जैसे ही हमारा, अगर सिर्फ हम महिलाओं की बात करें, तो जैसे ही काम खत्म होता था हमारे ये होता था कि चलो बाहर चलते हैं, पड़ोसन से दो बात बतिया आते हैं, उससे मन की बात करी आते हैं या इधर उधर निकल लेते हैं सैर के लिए। लेकिन अब क्या होता है, काम खत्म होता है और हमारा सीधा हाथ जाता है मोबाइल पे, मोबाइल लेके बैठ गए और फिर उसे घंटों स्क्रॉल किया हमने, तो ये बैठे बैठे बहुत सी जो समस्याएं हैं उनको जन्म दे रहा है। इसके अलावा टीवी पे जैसे घंटों बच्चे बैठे बैठे रहते हैं, तो इस चक्कर में वो जो आउटडोर गेम्स होते हैं उनको लगभग भूल चुके हैं, वो टीवी पे उनका गेम्स खेलना
0: वो बंद हो गया।
1: तो ऐसे में ये जो चीजें हैं ये कई तरह की बीमारियों को न्योता दे रही हैं, जैसे कि मोटापा है, मधुमेह है और सबसे बड़ी चीज तनाव, ऐसी बहुत सी चीजें बढ़ रही है। तो ऐसे में परिवार का देखो साथ होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यदि पूरा परिवार मिलकर योग करे, खेल खेलें और स्वस्थ स्वास्थ्य संबंधी जो अच्छी अच्छी आदतें हैं उनको अपनाएं, तो देखो फिट रहना बहुत आसान हो जाता है।
0: मनोज, एक छोटा सा वाक्य और बताती हूँ मैं कि कुछ साल पहले मैं बीएड कर रही थी, तो हमारा जो कॉलेज था वो बीकानेर से दूर था, तो बिल्कुल वीरान था, वहां वो ही बस जाती थी कॉलेज वाली, तो आने जाने का कोई साधन नहीं दूसरा, तो वो एक घंटा आने का और एक घंटा जाने का वो हमारा होता था।
1: अच्छा।
0: प्लस वहाँ हम पूरा तल्लीनता के साथ पढ़ाई तो करते, साथ में एक घंटा हमारा होता था खेल का और कुछ ना कोई कंपटीशन होता
1: रहता
0: था। तो एक बार दौड़ का कंपटीशन हुआ, एक पैर से दौड़ना था।
1: अच्छा।
0: तो ना एक बार था बोरी में पैर डाल के दौड़ना, तो थोड़ी एज थी मेरी, बाकी यंग बच्चियां थी, तो मैं भागे जा रही हूँ और पता है उसमें फर्स्ट भी आई मैं।
1: अरे वाह, इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए।
0: पता है उसमें मेरी जो मैडम थी वो क्या कह रही है, अरे किरण रुक रुक धीरे चल, पीछे बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो कौन संभालेगा। मैंने कहा मैम जीने दो हमें इस पलों को, अगर हम कहते हैं ना कि हम फिट रहेंगे तो बच्चों का

0: ख्याल रख ही लेंगे, सही बात है।
1: हम अगर स्वस्थ है तभी तो उनके पीछे भाग पाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ रख पाएंगे।
0: तो मनोज, फिट परिवार न केवल खुद खुश रहता है ना, बल्कि समाज को भी प्रेरणा देता है। स्वस्थ नागरिक ही देश की उन्नति में योगदान दे सकते हैं, इसलिए हर घर को फिट परिवार बनाने का संकल्प लेना चाहिए, तभी फिट इंडिया का संकल्प है, सपना है हमारा, साकार हो सकेगा। बिल्कुल।
1: और देखो, इस फिट इंडिया की बात कर लें या फिट परिवार की बात कर लें या खुश रहने की बात कर लें, तो जो संगीत है ना, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए अपनी सखियों को संगीत की दुनिया में लिए चलते हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मनोज, हम अपने ही आसपास कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होते देखते हैं जो कई बार हजम करना मुश्किल हो जाता है ना। मैं बात करना चाह रही हूँ कि हमारे आसपास के समाज में होने वाले अंधविश्वासों की।
5: बिल्कुल किरण, और ये अंधविश्वास समाज की एक ऐसी कुरीति है जो मनुष्य की जो सोचने समझने की शक्ति है ना किरण, उसको लगभग खत्म सा कर देते हैं। बिना किसी तर्क, प्रमाण या वैज्ञानिक आधार के किसी भी बात को सच मान लेना, यही तो है अंधविश्वास।
4: बिल्कुल मनोज, ये अंधविश्वास केवल व्यक्ति की प्रगति में बाधा नहीं बनता, बल्कि पूरे समाज को पीछे धकेल देता है।
5: बिल्कुल सही।
4: एक छोटा सा एक वाक्य और बताती हूँ कि कुछ वर्ष पहले मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी, होम ट्यूशन। तो एक बच्ची मेरे पास आती, तो कई दिन वो आई नहीं। तो मैं कुछ दिन बाद मैंने उसको कॉल किया कि क्यों नहीं आ रही, कि बीमार है। कुछ टाइम बाद वो आई तो बहुत सारे ताबीज पहने हुए थे गले में। तो मैंने कहा, ये बेटा क्या हुआ? तो कि मैम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे करके। फिर उसकी माँ आई तो मैंने कहा, भाभी ये क्या हुआ बच्ची के? कि पता नहीं, ऊपरी कोई छाया है और है, ये है वो है। मैंने कहा ऐसा कि नहीं, इसका तो पढ़ने में मन नहीं लगता, दिन भर ये सोई रहती है, हाथ पैर दर्द होते हैं तो ज़रूर, और इतने सारे ताबीज के फिर भी अभी भी ठीक नहीं है। मैंने कहा, आपने इसका चेकअप कराया कि नहीं? कि नहीं, वो तो नहीं कराया, नहीं इस छोटी सी बच्ची के क्या होगा ऐसा कुछ। तो पता है मनोज, उन्होंने चेकअप कराया तो विटामिन्स की कमी आई।
5: आप जब बात शुरुआत कर रहे थे तभी मुझे तो पकड़ में आ गया था कि हो ना हो उसमें किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी है, तभी तो वो इस तरह से परेशान।
4: तो ये जो अंधविश्वास है ना, कहीं ना कहीं हमें पीछे धकेल देते हैं।
5: बिल्कुल किरण, देखो ना, आज जो विज्ञान है, जो तकनीक का युग है, इसके चलते मानव ने चांद और मंगल तक पहुंच बना ली है। फिर भी समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी झाड़ फूंक है, टोना टोटका है, ग्रह नक्षत्रों के डर है, और फिर बहुत सी झूठी अफवाहें हैं जिन पे विश्वास किए बैठा है। कई बार लोग बीमारी का जो इलाज है वो डॉक्टर से कराने के बजाय तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, जैसा अभी आपने उस बच्ची के बारे में बताया। इसके जिससे क्या होता है कि एक तो समय है वो भी खराब होता जाता है, साथ ही पैसे की भी बर्बादी होती है। समय से मतलब, अगर वही बीमारी का इलाज हम समय पर जाकर डॉक्टर के पास पहुंचते तो शायद अगर कोई ऐसी बीमारी थी तो उसका इलाज संभव हो पाता, लेकिन हमने इन टोने टोटके और इनके चलते उस समय को तो खराब कर दिया। हम पहुंचते हैं देर से तो फिर हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जो कई बार लोगों की जान तक को नुकसान पहुंचा देते हैं।
4: और पता है मनोज, ये जो विटामिन B12 की समस्या होती है महिलाओं में आमतौर पर हो जाती है,
5: और इसका सीधा, सही कह रहे हो,
4: का सीधा असर क्या होता है कि हाथ पैर दर्द होते हैं, हमारी कमजोरी आती है भयंकर, और यहाँ तक कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो उस वक्त जो महिलाएं, गांव की महिलाएं, वो क्या करती है कि जरूर इसके तो कुछ
5: ना कुछ है, किसी ने कुछ करा दिया है। ये क्यों? आप देखिए ना किरण जी, हम मतलब आपने भी अपने जीवन में, अपने इवन अपने घर में तक इस चीज को देखा होगा कि अब जैसे ही हम किसी अच्छे काम के लिए घर से निकलने होते हैं और गलती से बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया तो बस बिल्ली की तो शामत है, मतलब उसे इतने ताने, इतनी गालियां सुननी पड़ती है कि अब तो काम

0: ही नहीं सकता, अब तो हमारा काम बिगड़। भाई वो जानवर है, उसे हमारे कामों से क्या पंचायती है, वो अपने रास्ते जा रही है, आप अपने रास्ते जाओ। ऐसा हो सकता है कि एक जानवर हमारे सामने से निकल गया और हमारा काम बिगड़ जाएगा?
1: मतलब हर किसी को स्थान चाहिए।
0: हर
1: तो आजकल घर बंद हो गए हैं तो बिल्लियों को भी तो जगह चाहिए।
0: छींक, आप देखो छींक एक शारीरिक क्रिया है, फिर भी हम उसका एक गलत मतलब निकाले बैठे हैं कि छींक दिया मतलब अब हमारा काम जो बनते काम है वो भी बिगड़ जाने हैं। इसके अलावा एक बहुत ही मार्मिक बात मैं बताऊं किरण जी, हम देखते हैं कि समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके जो पति होते हैं वो अल्पायु में कह लो या किसी बीमारी के चलते
1: गुजर चले जाते हैं।
0: ऐसे में अब तो ये चीजें बहुत कम हो गई है, पर अगर पहले की बात करें तो उस महिला का मुंह देखना, सुबह सुबह उसके उसका सामने आ जाना अच्छा नहीं माना जाता था कि अब हमारे अपशगुन हो गए। तो ये
1: जबकि मनोज ये बात आपने कही ना, तो मेरे को ये लगता है कि मेरे मन में आती है बात, कई बार हमारे भी एक पड़ोस में थी ऐसी महिला, उस बहुत पहले की बात है, तो लोग सारे कहते कि नहीं नहीं उसका मुंह दिख गया सही नहीं, जबकि इसको पॉजिटिव वे मिले।
0: सही बात है।
1: वो जो महिला है जो छोटी उम्र में विडो हो चुकी है, तो उसकी तपस्या तो देखो आप,
0: उसकी तपस्या देखो, आज उसकी हिम्मत देखो कि वो अकेले अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रही है,
1: मतलब कठिन जो संयम है वो उसका पालन कर रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो एक माँ के समान नहीं हुई।
0: सही बात है
1: कि माँ का रूप है, वो
0: माँ का रूप है,
1: ऐसा अगर बिल्कुल सामने अगर कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं अगर वो आ जाए
0: तो उसके चरण स्पर्श करो, निकलो ना,
1: निकलो उनका चेहरा दिखो, यानी कि माँ का चेहरा या माँ भगवती का दर्शन हो गया, ऐसा भी हम विचार कर सकते हैं। तो हमारा काम बिल्कुल ये फैक्ट है कि अच्छा ही होगा।
0: बिल्कुल। देखो किरण जी, ये बात करें अंधविश्वास की, देखो इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा,
1: बिल्कुल,
0: डर और जागरूकता की कमी। जब व्यक्ति सही और गलत में अंतर नहीं समझ पाता ना, तब जाकर वह इन भ्रम और ये जो अफवाहें हैं ना, इनका शिकार बनता है। इसीलिए आज के समय में सबसे ज्यादा जो है शिक्षा का प्रसार है वो बहुत आवश्यक है। शिक्षा जो होती है वो मनुष्य को तर्क करना सिखाती है और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसमें वो विकसित करती है। आप देखो ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा हथियार बताया, वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने युवाओं को विज्ञान और नवाचार की ओर प्रेरित किया। उनका मानना था कि प्रगति के लिए वैज्ञानिक सोच का होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बहनों, इसलिए क्या है कि अंधविश्वास को कभी भी अपने पर हावी न होने दे, क्योंकि अंधविश्वास का अर्थ है बिना किसी तर्क सबूत या वैज्ञानिक आधार के किसी बात को सच मान लेना। ऐसा ही बताया ना मनोज आपने।
0: बिल्कुल। अंधविश्वास देखो केवल एक चीज है किरण जी की, ये जो अंधविश्वास है, जिस व्यक्ति ने अंधविश्वास किया ये केवल उस व्यक्ति को पीछे नहीं धकेल रहा है, बल्कि ये पूरे समाज को, उसकी एकता को, उसके विकास को प्रभावित करता है। जब लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं तो देखो वे मेहनत और जो कर्म है ना उस पर तो विश्वास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि सफलता का मार्ग ज्ञान परिश्रम आत्मविश्वास से होकर ही तो गुजरता है।
1: बिल्कुल। इसलिए हमारा बहनों को यही कहना है कि आप अंधविश्वास में विश्वास ना करें।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। ये जो हमारी परंपरा है ना, जो वैज्ञानिक तथ्य लिए हुए हैं उस पे विश्वास करें,
0: उस पे विश्वास करें।
1: कि जैसे हमारी बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, पीपल में जल चढ़ाना चाहिए, तो ये विश्वास है हमारा,
0: वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल। वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, तुलसी बहुत से रोगों को दूर करती है, पीपल की छाया हमें छाया तो प्रदान करती है, प्लस ऑक्सीजन मिलता है उससे। तो ऐसे काम करें जिससे हमारा विश्वास बढ़े, अंधविश्वास नहीं।
0: सही कह रहे हो। इसीलिए बहनों हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम खुद भी अंधविश्वास से दूर रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। एक शिक्षित जागरूक और वैज्ञानिक सोच वाला समाज ही तो देश की प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। तब यही कहना चाहेंगे कि ज्ञान का दीप जलाना है, अंधविश्वास मिटाना है, विज्ञान और शिक्षा अपना कर नया समाज बनाना है।
0: बिल्कुल। तो चलिए अभी के लिए बहनों को एक गीत सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: पहुंच रहे हम
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: किरण, गर्मी ने देखो ना अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए।
1: बिल्कुल।
0: और इस गर्मी से राहत के लिए ना सबका मन करता है कि कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए, जिससे कि इस गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। और पता है इसके चलते ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो हाथ है ना वो सीधे सबसे पहले जाता है बाजार में मिलने वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स है और जो पैकेट बंद जूस होते हैं ना उनपे। किरण, ये चीजें गर्मी से तो तुरंत राहत

0: बनानी चाहिए, यानी ऐसी कोई ड्रिंक बनानी चाहिए जिससे गर्मी से तो राहत मिले ही प्लस स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी ना हो, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कुछ एक दो ड्रिंक्स बताओ हमारे बहनों को।
0: बिल्कुल बताती हूँ। सबसे पहले तो ठंडा सत्तू है ड्रिंक, वो शायद मेरे हिसाब से अच्छा रहता है।
1: सत्तू बहुत ठंड करता है,
0: तो उसके लिए क्या करना है, 2-3 चम्मच सत्तू लेना है। सत्तू क्या है, भुना हुआ चना है, उसको बारीक पीस ले। एक ग्लास ठंडा पानी, स्वादानुसार नमक, थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, नींबू का रस, बारीक कटा प्याज अगर आप खाते हो तो, और थोड़ी हरी धनिया। तो बनाने की विधि क्या है, एक ग्लास में जो है सत्तू वो डाले और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह घोल बना ले उसको, ताकि गुठलियां ना रहे, चम्मच से अच्छे से गुठलियों को तोड़ ले। अब बाकी जो ठंडा पानी है एक जग जैसे आपने रखा है तो वो भी उसमें डाल दे। अब नमक, भुना हुआ जीरा, नींबू का रस उसमें डाल दे और अच्छे से मिलाकर ठंडा ठंडा परोसे।
1: ये तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा देखो, हम जो सौंफ जो होती है वो कहते हैं ना, उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो बस सौंफ को जैसे आप रात को भिगो के रखें और जो धागे वाली मिश्री होती है उसका आप यूज करें, तो बस सुबह उसको अच्छे से, वैसे तो देखो मिक्सी और ये सब आज के चलन है, मैं अपने समय में याद करूँ तो मेरी दादी सा उसे पत्थर पे, सिलबट्टे पे जो सौंफ थी उसको पीस के और फिर हमें थी, वो इतना ठंडा और इतना मीठा पीने में और इतना टेस्टी होता था कि ऐसे दिल एकदम तरोताजा हो जाता था। तो बस बहनों, हमें कुछ ऐसी जैसे कैरी पना है, छाछ है, मट्ठा है, इस तरीके की चीजें हमें ये सब पिएंगे ना तो हमारा जो शरीर है वो भी ठंडा रहेगा, गर्मी से हमें राहत भी मिलेगी, साथ ही हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा।
0: तो और जहाँ तक हो मनोज, हमारे जो बच्चे हैं ना उनको भी यही आदत डालनी चाहिए कि जो कोल्ड ड्रिंक से मार्केट वाली उसको अवॉइड करके, मार्केट में ही मिलते हैं आजकल मटके में ठंडी छाछ मिलती है, नींबू पानी मिलता है, गन्ने का रस मिलता है, तो अगर कहीं बाहर घूम रहे हैं तो वो आप पी सकते हैं,
1: बंद डिब्बे वाले थोड़ा अवॉइड करें।
0: और हाँ, सौंफ की जब बात की ना तो मनोज मुझे आज भी याद है कि आजकल तो हम क्या करते हैं कि ठंडा ही ले आते हैं घर पे, बोतल ले आते हैं झटपट बनाने के, उसमें मेरी मम्मी क्या करती थी, सिलबट्टे पे सारा सामान पीसती, उसमें रात को भिगो देती थी सौंफ, बादाम, काली मिर्च और इलायची, इन सब और खसखस, जो
1: उसकी तासीर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है,
0: तासीर भी ठंडी होती है और दिमाग भी तेज करती है। तो उसको भिगो के रात को सिलबट्टे पे पीस के उसमें उसको अच्छे से बारीक छान के कपड़े में, उसमें चीनी डाल के फिर ठंडा पानी डाल के हमें दूध मिलाकर देती, तो वो बहुत बढ़िया लगता था।
1: तो पहले ऐसे बहुत सी ड्रिंक्स है पीने के लिए और घर पे बनाने के लिए जो ज्यादा तामझाम भी उनके लिए नहीं करनी पड़ती है। तो आप भी इनको बनाएं और पिएं
0: और चलो इसके साथ अपने दिमाग को भी ठंडा कीजिए इस प्यारे से गीत से।
1: बिल्कुल।

0: किरण, बातें तो बहुत है हमारे पास सखियों संग करने के लिए, पर जो नहीं है वो
1: समय
0: बिल्कुल। स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि अभी वक्त हो चला है बहनों से विदा लेने का।
1: तो मैं किरण शर्मा
0: और मैं मनोज खंगारो
1: लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर

0: लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जन भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक

0: की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला गीत जिसे गाया है परवीन सुल्ताना ने, गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत R.D. बर्मन का। फिल्म का नाम है कुदरत।

अशरथ जयपुरी के लिखे गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, फिल्म थी संगम। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, गीत को लिखा है शंकर जयकिशन ने, फिल्म का नाम है आरजू और गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म आंगन की कली के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा के प्रसारणों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।

0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी बीकानेर के युवाणी कार्यक्रम में आप सभी युवा साथियों का हार्दिक स्वागत है। हाजिर हूँ मैं आपकी युवा साथी दिव्या।
1: और दोस्तों, मैं आपकी साथी सुखमणि। शाम के इस सुहाने वक्त में, जब सूरज ढल रहा है, हम लेकर आए हैं एक ऐसी चर्चा जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ी है।
0: जी सुखमणि, आज हम उस अनमोल तोहफे की बात करेंगे साथियों, जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, लेकिन जिसे हम अक्सर दरवाजों यानी कि बंद दरवाजों और एयर कंडीशनर के पीछे भूलते ही जा रहे हैं। यानी कि हमारा आज का पहला विषय है ताजी हवा, हमारे स्वास्थ्य का राज।
1: बिल्कुल सही कहा दिव्या। अक्सर हम सोचते हैं कि भारी भरकम जिम जाने से या महंगी डाइट लेने से ही सेहत बनती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का आधार प्राणवायु यानी ऑक्सीजन है।
0: और अगर हम पुराने जमाने और आज की तुलना करें साथियों, तो फर्क साफ दिखता है। हमारे बुजुर्ग, जिनके घर खुले होते थे, हवादार होते थे, उनका ज़्यादातर समय खेतों या खुले आंगन में बीतता था, तो भी वे बीमारियों से कम सामना कर पा रहे थे। यानी उस टाइम बीमारियां बहुत कम थी और मानसिक शांति ज़्यादा। लेकिन आज देखें तो हमारे पास फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, लेकिन मेंटल पीस बेहद कम है।
1: बिल्कुल सही कहा दिव्या। और आज का हाल देखिए, हम कंक्रीट के जंगलों में कैद हो गए हैं। सुबह उठते ही ताज़ी हवा की जगह हम मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं और फिर पूरा दिन ऑफिस या कॉलेज के बंद कमरों में। इसी कारण आज का युवा जल्दी थकान और तनाव का शिकार हो रहा है।
0: यही तो चिंताजनक विषय है साथियों। अब हम सुखमणि से जानेंगे कि ताज़ी हवा असल में हमारे शरीर पर कैसे काम करती है।
1: बिल्कुल दिव्या, क्यों नहीं, इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है फेफड़ों की सफाई। जब हम ताज़ी हवा में गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे खून साफ होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है बेहतर पाचन। ताज़ी हवा में टहलने से पाचन क्रिया तेज होती है, जो वजन कम करने में मददगार है।
0: और युवाओं यानी हम सभी युवा साथियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एकाग्रता। शुद्ध हवा मस्तिष्क की कोशिकाओं को तरोताज़ा कर देती है, जिससे याददाश्त और हमारा जो फोकस है वो बढ़ता है। इसके साथ ही एक बेहतर इम्यूनिटी बूस्टर भी है।
1: और दिव्या, क्या तुम जानते हो, आजकल स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या बहुत बढ़ रही है। विज्ञान कहता है कि ताज़ी हवा में रहने से शरीर में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बढ़ता है, जो हमारे मूड को तुरंत खुशहाल बना देता है।
0: तो मेरे युवा साथियों, जब भी हम पढ़ाई या करियर की चिंता को लेकर परेशान होंगे, तो बस 15 मिनट के लिए किसी पार्क या खुली जगह पर जाना है। तो इससे हम महसूस करेंगे कि हमारी आधी समस्याएं तो हवाओं के साथ ऐसे ही बह गई हैं।
1: बिल्कुल साथियों, चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि खिड़कियां सिर्फ पर्दे लगाने के लिए नहीं, बल्कि ताज़ी हवा के स्वागत के लिए भी होती हैं। हर सुबह और शाम खुद को प्रकृति के करीब ले जाएं।
0: और याद रखिए, अगर हम ताज़ी हवा के लिए आज समय नहीं निकालेंगे, तो कल ये हवाएं हैं ये हमसे नाराज़ हो जाएगी और हमें हवाओं के बजाय दवाइयों के लिए समय निकालना पड़ेगा। इसके साथ ही ब्रेक लेने से पहले जान लेते हैं उन दो सवालों का परचम। यानी कि अब वक्त हो चुका है कि अब हमें जानना है कि उन दो सवालों को जानना है जो हमारे क्विज टाइम के आज सवाल हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया मंजूरी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। मैं अपने सवाल को दोहराती हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया मंजूरी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी।
1: और दोस्तों, आज का आपका दूसरा सवाल है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का नया उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP क्या तय किया गया है। मैं सवाल दोहराती हूँ, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 2000

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: दिव्या, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ताज़ी हवा हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है, वैसे ही कुछ संस्थाएं हैं जो समाज को बाहर से मजबूत बनाने का काम करती हैं।
3: बहुत ही सुंदर बात कही है तुमने सुखमणि। ताज़ी हवा जहां प्राण वायु है, वही इंसानियत की सेवा समाज की प्राण वायु है। और जब बात सेवा की आ रही है तो आज के दिन एक ही नाम हमारे जहन में आता है और वो है रेड क्रॉस।
2: दोस्तों, आज है 8 मई, यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये दिन उन करोड़ों स्वयंसेवकों को समर्पित है जो बिना अपनी जान की परवाह किए दुनिया के हर कोने में मदद पहुंचाना चाह रहे हैं।
3: और सुखमणि,

0: आप हमारे दोस्तों को ये बता सकती हैं कि ये दिन आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है?
1: बिल्कुल दिव्या, दरअसल आज रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन है। 1859 में एक भीषण युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की तड़प देखकर उनका दिल पसीज गया था। उन्होंने तय किया कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करे।
0: और इसी नेक सोच के लिए उन्हें दुनिया का पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। आज के इस दौर में जब हम युवाओं की बात करते हैं तो रेड क्रॉस हमें निस्वार्थ भावना सिखाता है और मदद के लिए किसी बड़े पद की नहीं साथियों, बस एक बड़े दिल की ज़रूरत होती है, ये भावना जागृत करता है।
1: और इसमें सबसे बड़ा योगदान है रक्तदान। रेड क्रॉस के माध्यम से दुनिया भर में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं उनमें हमारे युवा साथी रक्तदान करके किसी को जीवन दान दे सकते हैं। ये महादान ही असली सेवा है।
0: और चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या कोई और आपदा, रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स हैं सबसे पहले पहुंचते हैं। साथियों, पुराने समय में ये सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, आज स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन के लिए दूसरा नाम बन चुका है रेड क्रॉस।
1: तो दोस्तों, हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी समाज के लिए उम्मीद की एक नई किरण बने। जैसे रेड क्रॉस का लाल प्लस का निशान एक उम्मीद जगाता है, वैसे ही आपकी एक छोटी सी मदद किसी का जीवन बदल सकती है।
0: बिल्कुल सुखमणि। तो साथियों, ताजी हवा का आनंद लें और अपने भीतर की इंसानियत को भी ताजा रखें। और कार्यक्रम को तरोताजा रखने के लिए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, सुरक्षा सिर्फ अस्पतालों या आपदाओं तक सीमित नहीं है। यह हमारे रोज़मर्रा के उस सफ़र से जुड़ी है जो घर से बाहर कदम रखते ही शुरू होता है।
1: जी साथियों, मंजिल से खूबसूरत रास्ता होता है, लेकिन ये रास्ता खूबसूरत सिर्फ तभी तक है जब तक हम खुद सुरक्षित हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर साल दुनिया भर में लाखों लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं, और इनमें सबसे बड़ी संख्या हम युवाओं की होती है।
0: और दिव्या, इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र हर साल वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है। आज युववाणी में हमारी चर्चा इसी पर है कि कैसे एक छोटी सी सावधानी बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: जी सुखमणि, सड़क पर हमारी एक छोटी सी गलती सिर्फ हमारी जान जोखिम में नहीं डालती साथियों, बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को प्रभावित कर देती है। ये अभियान याद दिलाता है कि सड़कें केवल मशीनों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए भी बनी हुई है।
0: युवाओं के लिए इसमें स्पष्ट संदेश है। सबसे पहली बात, रफ्तार पर लगाम। जोश में आकर बाइक की रफ्तार बढ़ाना बहादुरी नहीं है। याद रखें, तेज रफ्तार मौत का हार।
1: और दूसरी अहम चीज़ इसमें ये है सुखमणि कि हेलमेट और सीट बेल्ट का रूल, ये कोई बोझ नहीं है या पुलिस से बचने का कोई जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारा ही सेफ्टी है, यानी हमारा ही सुरक्षा कवच है। घर पर कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम उनके लिए इसे ज़रूर पहनना चाहिए।
0: साथ ही साथ दोस्तों, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एकाग्रता भंग करता है। सड़क पर चलते समय ध्यान सिर्फ सड़क पर ही होना चाहिए। साथ ही नशे में ड्राइविंग कानूनी जुर्म तो है ही, ये खुदकुशी के बराबर भी है।
1: और पुराने ज़माने की तुलना में देखें तो आज सड़कें और गाड़ियां बहुत तेज़ हो गई है। ऐसे में सड़क शिष्टाचार और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना हमारा कर्तव्य है।
0: तो दोस्तों, आइए इस वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह में शपथ लें कि हम न केवल खुद नियमों का पालन करेंगे, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है, और सड़कों को सुरक्षित बनाइए और जीवन को खुशहाल।

0: सुखमणि, अब जो हमारा टॉपिक है ये साइंस से तो जुड़ा है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सुनने में लगता है।
1: बिल्कुल दिव्या, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर, बार्क, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में।
0: अब ऑनेस्टली बोलूँ साथियों, तो बचपन में जब भी एटॉमिक नाम सुनती थी तो बस बॉम्ब या डेंजरस एक्सपेरिमेंट ही दिमाग में आते थे।
1: बिल्कुल दिव्या, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन बाद में पता चला कि न्यूक्लियर साइंस सिर्फ वेपन्स तक लिमिटेड नहीं है, इसका यूज़ मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर और कई यूज़फुल चीज़ों में भी होता है।
0: तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। बार्क यानी बार्क आखिर है क्या?
1: देखो दिव्या, बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत का सबसे प्रमुख न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। ये मुंबई के ट्रॉम्बे एरिया में स्थित है।
0: यानी कि यहाँ पर साइंटिस्ट न्यूक्लियर साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते हैं।
1: बिल्कुल, वैसे इसका नाम भाभा क्यों रखा गया ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
0: जी साथियों, इसका नाम रखा गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है।
1: यानी कि भारत में न्यूक्लियर रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की नींव रखने वाले सबसे बड़े साइंटिस्ट्स में से एक।
0: और सच में साथियों, अगर आज इंडिया न्यूक्लियर साइंस में इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है तो उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है।
1: वैसे दिव्या, शुरुआत में बार्क का नाम कुछ और था ना?
0: पहले इसका नाम था

0: एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, यानी कि बाद में डॉक्टर भाभा की याद में इसका नाम बदलकर बार्क कर दिया गया।
1: और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल दिव्या, बार्क में आखिर होता क्या है?
0: देखो, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एडवांस रिसर्च होती है।
1: और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी ही नहीं, बल्कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, वाटर प्योरिफिकेशन जैसी फील्ड्स में भी काम होता है।
0: मतलब ये सिर्फ लेबोरेटरी तक लिमिटेड नहीं है साथियों, बल्कि लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी सबसे आगे है।
1: अब न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो कई लोगों को ये कंसेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग लगता है।
0: हाँ, लेकिन आसान शब्दों में समझे या बोलें तो न्यूक्लियर एनर्जी एटम से मिलने वाली एनर्जी यही होती है।
1: और इसका सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि बहुत कम फ्यूल से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है,
0: और इसी वजह से कई कंट्रीज न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूचर एनर्जी सोर्स की तरह देखती आ रही है।
1: और दिव्या, इंडिया में न्यूक्लियर रिसर्च और रिएक्टर से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में बार्क की बहुत अहम भूमिका रही है।
0: और इसके साथ ही एक फन फैक्ट सुनोगे?
1: हाँ बिल्कुल दिव्या, बताओ।
0: यानी कि जो मैं बता रही हूँ फन फैक्ट के रूप में, ये एक जानकारी भी और फन फैक्ट भी। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा था और इसे डेवलप करने में भी बार्क की सबसे बड़ी भूमिका थी।
1: और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अप्सरा एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी था।
0: ये सुनकर सच कहूँ तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों में इतने बड़े माइलस्टोन अचीव किए हैं।
1: अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग अक्सर न्यूक्लियर वर्ड सुनते ही डर जाते हैं।
0: हाँ, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, क्योंकि हमारे माइंड में एक्सीडेंट्स या रेडिएशन जैसी बातें तुरंत आ जाती है।
1: बिल्कुल, लेकिन रियलिटी ये है कि न्यूक्लियर रिसर्च में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं,
0: और बार्क में साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स लगातार मॉनिटरिंग और सेफ्टी सिस्टम पर जो काम करते आ रहे हैं, जिससे हर प्रोसेस सुरक्षित तरीके से सफल हो सके।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं मेडिसिन फील्ड की, जहां बार्क का कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
0: बिल्कुल, कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली जो रेडिएशन थेरेपीज़ हैं और कई मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यूक्लियर साइंस से ही जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल, यानी साइंस सिर्फ मशीन्स और एक्सपेरिमेंट्स तक नहीं, बल्कि लोगों की हेल्थ इम्प्रूव करने में भी मदद कर रही है।
0: और एग्रीकल्चर में भी इसका काफ़ी यूज होता है, जैसे बेहतर क्रॉप वेराइटीज़ डेवलपमेंट और फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक में जो रिसर्च काम आती है, ये भी बार्क का ही एक हिस्सा है।
1: यानी दिव्या, इनडायरेक्टली फार्मर्स और फूड इंडस्ट्री को भी इसका फ़ायदा मिलता है।
0: बिल्कुल, वैसे अगर कोई स्टूडेंट साइंस फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए बार्क एक ड्रीम प्लेस की जगह हो सकता है।
1: बिल्कुल, यहाँ इंजीनियर्स, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट और कई अदर साइंस स्टूडेंट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं।
0: और बार्क रनिंग प्रोग्राम के भी यही कंडक्ट करता है, जहाँ यंग साइंटिस्ट को एडवांस रिसर्च का एक्सपोज मिलता है।
1: मतलब अगर किसी को रिसर्च, इनोवेशन, साइंस में इंटरेस्ट है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है।
0: मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत इंस्पायरिंग लगती है सुखमणि, कि लेबोरेटरीज में होने वाले रिसर्च आखिरकार हम आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में भी काम आ रही है।
1: बिल्कुल सही कहा दिव्या, और अक्सर हम साइंस को सिर्फ किताबों तक सीमित समझ लेते हैं, जबकि उसका कनेक्शन हमारी डेली लाइफ से बहुत गहरा है।
0: तो साथियों, अभी हम जान रहे हैं कि बार्क क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है,
1: और साथ ही हमने ये भी जाना है कि न्यूक्लियर साइंस सिर्फ पावर या डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि हेल्थ, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों से भी जुड़ी हुई है।

0: अब हमारा टॉपिक ऐसा है साथियों, जिसका नाम आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स पर सुना होगा लेकिन शायद डिटेल में कभी समझा नहीं होगा।
1: बिल्कुल दिव्या, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कनेक्शन सीधे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। चाहे बाइक में पेट्रोल भरवाना हो, ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाना हो या फिर बस और कैब से ट्रैवल करना हो, हर जगह इसका असर दिखाई देता है।
0: जी साथियों, अब हम बात करने वाले हैं ओपेक की।
1: अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये ओपेक आखिर है क्या,
0: तो चलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ से शुरुआत करते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़।
1: यानी दोस्तों, ऐसे देशों का एक ग्रुप जो दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि ऑयल प्रोडक्शन और सप्लाई से जुड़े बड़े फैसले भी लेते हैं।
0: और क्योंकि ऑयल आज दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसीलिए ओपेक के डिसीजन भी पूरी दुनिया पर असर डालते हैं।
1: दिव्या, अब सवाल ये आता है कि ऑयल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
0: देखो सुखमणि, आज की दुनिया के ज़्यादातर व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल और डीजल पर ही चलते हैं। एयरप्लेन्स हो में एविएशन फ्यूल लगता है, फैक्ट्रीज में

0: कुल लगता है, और कई इंडस्ट्रीज डायरेक्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है।
1: यानी कि ऑयल सिर्फ गाड़ियों तक लिमिटेड नहीं है, प्लास्टिक, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और कई रोज़मर्रा की जिंदगी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं।
0: एग्जैक्टली, इसीलिए अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होता है, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सामान भी महंगा पहुँचेगा, फिर धीरे धीरे ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है,
1: यानी इनडायरेक्टली हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं।
0: अब थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं कि ओपेक की शुरुआत हुई थी 1960 में,
1: और शुरुआत में इसमें सिर्फ पांच ही देश थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला।
0: और इन्हीं देशों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई क्योंकि उस समय ऑयल मार्केट पर बड़ी वेस्टर्न ऑयल कंपनीज का काफ़ी कंट्रोल था।
1: तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज चाहती थी कि उनके रिसोर्सेज पर उनका खुद का ज़्यादा कंट्रोल हो,
0: और धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी ओपेक ज्वाइन किया, और आज ये ग्लोबल ऑयल मार्केट का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल मार्केट माना जाता है।
1: अब दिव्या मुझे ये बताओ कि इसका मेन काम क्या है।
0: सिंपल वर्ड्स में और समझदारी वाले शब्दों में कहें तो ऑयल मार्केट को स्टेबल रखने की कोशिश करना ही ओपेक का मुख्य उद्देश्य है।
1: मतलब अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाएगा तो प्राइसेस बहुत नीचे आ सकते हैं,
0: और अगर ऑयल बहुत कम प्रोड्यूस होगा तो प्राइजेज अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं।
1: तो इसीलिए ओपेक कंट्रीज बैठकर डिस्कस करती हैं कि प्रोडक्शन कितना रखना है।
0: और कई बार हमने न्यूज़ में ये भी सुना होगा कि ओपेक ने जो ऑयल प्रोडक्शन कट किया या प्रोडक्शन बढ़ाने का जो फैसला लिया है वो ही ओपेक के द्वारा लिया जाता है।
1: बिल्कुल, और उसके बाद अक्सर पेट्रोल प्राइसेस की चर्चा शुरू हो जाती है।
0: वैसे इसमें सबसे पावरफुल कंट्री किसे माना जाता है सुखमणि?
1: देखो दिव्या, अक्सर सऊदी अरेबिया को सबसे इन्फ्लुएंशियल मेंबर माना जाता है क्योंकि उसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं,
0: और उसकी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसके डिसीजन भी काफ़ी इम्पोर्टेंस माने जाते होंगे।
1: दिव्या, अब एक इंटरेस्टिंग वर्ड आता है, ओपेक प्लस।
0: जी साथियों, ओपेक प्लस, जिसमें ओपेक कंट्रीज़ के अलावा कुछ और मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ भी शामिल होती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया के बाद में है रशिया,
1: और ये सभी मिलकर ऑयल सप्लाई और प्राइसेस को लेकर डिस्कशन करते हैं।
0: अब बात करते हैं हमारे देश भारत की, आखिर ओपेक का असर हमारे देश पर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है?
1: क्योंकि दिव्या, इंडिया अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है।
0: मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल महंगा होगा तो इंडिया को भी उसकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, और फिर उसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिखाई देता ही है।
0: जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, उसके साथ खाने पीने की चीज़ों को लेकर डेली यूज़ प्रोडक्ट तक भी उसकी कीमत में फ़र्क आने लगता है।
1: यानी ग्लोबल ऑयल मार्केट की हलचल सीधे आम लोगों तक पहुँचती है।
0: लेकिन अब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी तेज़ी से बढ़ रही है।
1: बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब पर काफ़ी फोकस बढ़ गया है,
0: और कई देशों का उद्देश्य है कि फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम की जाए।
1: लेकिन दिव्या, फिलहाल रियलिटी यही है कि ऑयल अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है,
0: और इसीलिए ओपेक जैसी ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस भी बनी हुई है।
1: मुझे पर्सनली भी ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है दिव्या, कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में लिया गया एक फैसला हमारे शहर के पेट्रोल पंप तक असर डाल देता है।
0: और यही बात है कि वैश्वीकरण का असर हमारे देश भारत पर भी होता है।

0: साथियों, अब वक्त हो चला है उन दोनों सवालों के जवाब जानने का जिनके सवाल हमने आपसे पूछे थे कार्यक्रम की शुरुआत में। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया मंजूरी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। उसका सही जवाब है 38।
1: दोस्तों, आज का दूसरा सवाल था कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का नया उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP क्या तय किया गया है। इसका जवाब है 365 रुपये प्रति क्विंटल।

0: और इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा रोजगार सूचना का, क्योंकि स्वच्छ रहने और सुरक्षित रहने के साथ साथ करियर की राह पर सही कदम बढ़ाने भी बेहद ही जरूरी है।
1: बिल्कुल दिव्या, और आज हमारे पिटारे में दो बहुत बड़े मौके हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना भविष्य देख रहे हैं तो कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI की।
0: जी साथियों, यूनियन बैंक ने 1865 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। सुखमणि, ये उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद बैंकिंग की बारीकियों को सीखना चाहते हैं।
1: सही कहा दिव्या, इसके लिए योग्यता सिर्फ स्नातक यानी ग्रेजुएशन है, और सबसे काम की बात, आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 मई 2026 है। तो इंतजार मत कीजिए। अगर आप बैंक की कार्य प्रणाली को करीब से समझना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है।
0: और सुखमणि, जो दोस्त थोड़ा और ऊंचा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और सीधा अधिकारी यानी ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए RBI ने भी अपने दरवाजे खोल रखे हैं।
1: क्या बात है दिव्या, मुझे भी पता लगा कि रिजर्व बैंक यानी बैंकों का बैंक है जो, वहाँ ग्रेड बी ऑफिसर के 60 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 60% अंक होने ज़रूरी हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 है।
0: तो दोस्तों, चाहे आप यूनियन बैंक के साथ अपनी शुरुआत करना चाहते हैं या सीधे RBI में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, आपके पास समय बेहद कम है। याद रखिए, तारीख है 19 मई और 20 मई। इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को टॉप गियर में डाल दीजिए।
1: और हाँ दिव्या, हमारे दोस्त फॉर्म भरते समय सावधानी जरूर बरतें। आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाकर आवेदन करें और अपनी निजी जानकारी जैसे आधार नंबर या अन्य दस्तावेज सुरक्षित तरीके से ही अपलोड करें।
0: बिल्कुल सही। तो युवा साथियों, कमर कसिए और इन अवसरों का लाभ उठाइए, आपकी मेहनत ही आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाएगी।
1: दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम आई होगी। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर।

0: तू थोड़ी देर और ठहर जा, लेकिन घड़ी की ये जो सुइयां हैं जो अब इजाज़त दे रही हैं विदा लेने को, तो साथियों ख्याल रखिएगा अपनों का, अपना और हमारा भी, क्योंकि हम आते हैं ठीक शाम 5:05 पर। इजाज़त दीजिए आपकी युवा साथी दिव्या
1: और मैं सुखमनी।
0: नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज

शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संकेत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही फिल्म से।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत शाम 7 बजे से। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे चर्चा खेती व पशुपालन में AI का आगमन, साथ ही सुनेंगे वन्य जीव जंतुओं तथा पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था विषय पर जानकारी, साथ ही सुनेंगे कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारियां और राजस्थानी लोकगीत। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे बजरंग सारस्वत और अश्विनी व्यास।

सुगम संगीत आप सुनेंगे शाम 7:45 से रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात्रि 8:30 बजे लोक संगीत। रात 9:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष पर वेटनरी ऑडिटोरियम बीकानेर में आकाशवाणी बीकानेर द्वारा आयोजित शास्त्रीय संगीत संध्या सितार और सरोद पर जुगलबंदी। कलाकार होंगे असित गोस्वामी और अमित गोस्वामी। इनको तबला पर संगति देंगे शब्बीर हुसैन कलावंत। सहभागिता होगी कविता वर्मा की। तकनीकी प्रभारी होंगे गिरधारी लाल बाटन। तकनीकी सहयोग पुरुषोत्तम संजय गौड़ सुरेश गहलोत आलोक सानी और मुकुल भट्टागर का। ओबी प्रभारी होंगी मीनाक्षी मल्लिक। प्रस्तुति बरखा थानवी व्यास की और रेवंत राम लेगा की। कार्यक्रम संयोजक होंगे श्री अमित सिंह। समय याद रखिएगा आज रात 9:30 बजे से।

0: ये था हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर संध्या के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी

0: हरी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे एक ही फिल्म से। सुनते हैं पाकीजा फिल्म के ये गीत।
3: किसकी आंखों का नूर हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। करगम के इस गीत में फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म पाकीज़ा में। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को पाकीज़ा फिल्म के गीत। आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज आप सुन रहे थे फिल्म पाकीजा के गीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि और उससे जुड़े विभिन्न विभागों का एक क्लस्टर बनाकर काम कर रही है ताकि किसानों को तकनीक और निवेश का पूरा लाभ मिल सके। वे आज हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर मीट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती के मॉडल राजस्थान की कृषि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। श्री शर्मा ने हैदराबाद को आईटी और एग्रीटेक नवाचारों का बड़ा केंद्र बताते हुए वहां के निवेशकों और उद्यमियों को 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले ग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
1: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही हैं, तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय और 16 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही बूंदी के हिंडोली में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया है। अब ये परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि परीक्षा इस वर्ष सितंबर में होना संभावित है। इस परीक्षा में केवल वे ही 3,83,097 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा में बैठे थे। नए आवेदकों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 16 मई से 30 मई तक का समय दिया गया है। इस दौरान मोबाइल नंबर, ईमेल और पत्राचार का पता अपडेट किया जा सकेगा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने आज 4 महिलाओं की किडनी फेल होने की पुष्टि की है जिनका डायलिसिस किया जा रहा है। वहीं आज राज्य के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने अस्पताल का दौरा कर वार्डों और ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलाइजेशन व्यवस्था का निरीक्षण किया। औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से दवाओं और फ्लूइड के 23 नमूने लिए गए हैं। एहतियात के तौर पर संबंधित दवाओं के इस्तेमाल पर पूरे प्रदेश में तत्काल रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि इस घटना में अब तक 2 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में बच्चों और मातृ शक्ति के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण तथा सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वे आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक आहार समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पोषाहार वितरण में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का संकल्प साकार होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सचिव ने बताया कि मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं।
2: अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया। ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,86,000

0: 67,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7,00,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में कल इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, बैंक ऋण और पारिवारिक विवादों को सुलझाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले में लोक अदालत के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। झुंझुनू जिले में करीब 15,000 मामलों को राजीनामा के लिए चिन्हित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. महेंद्र के सिंह सोलंकी ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी समझ और सहमति से किया जाता है।
2: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है, अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण है उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में इन दिनों प्रदेश भर में काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सवाईमाधोपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से दशहरा मैदान में योग शिविर लगाया गया। इसमें पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया और करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। कोटपुतली बहरोड के पावटा और पाली के कोलीवाड़ा में भी स्कूली विद्यार्थियों के लिए योग शिविर आयोजित किए गए। और अब मौसम। प्रदेश में आज ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां चिलचिलाती धूप से लोगों की दिनचर्या पर असर हुआ है। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता।
3: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: पाली में भी तेज गर्मी को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कड़ी धूप में नहीं निकलने और सूती कपड़े पहनने का परामर्श दिया है। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज नागौर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों में धूल भरी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। इन स्थानों पर कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। वहीं सवाईमाधोपुर और बूंदी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात का येलो अलर्ट दिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज बामनवास के भांवरा और खंडार के बलवन खुर्द में शिविर लगाए गए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अमित कुमार गोयल ने बताया कि ये अभियान 12 मई तक जिले के विभिन्न गांवों में जारी रहेगा। इन शिविरों में टीबी से जुड़ी विभिन्न जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। पाली के व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार का चयन भारतीय टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में 25 से 28 मई तक आयोजित होने वाली इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भरत पवार ने साल 2019 में इस खेल की शुरुआत की थी और वे साल

0: 2022 में राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने पैरा स्विमिंग में स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर व्हीलचेयर रग्बी में रजत पदक हासिल किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कल ओडिशा तट पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों उदयपुर का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सड़क, पानी, बिजली और सरकारी योजनाओं की धरातल पर प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने उदयपुर में पर्यटन को विकसित करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। विशेष रूप से उदयपुर के मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री इसके बाद प्रतापगढ़ के भंभोरी गांव के लिए रवाना हुए। इससे पहले डबोक हवाई अड्डे पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई हालिया कार्रवाई में गड़बड़ियों के कारण दो निजी आईवीएफ सेंटरों का पंजीयन निलंबित किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश में चलाए जा रहे आईवीएफ सेंटर्स में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रवैया अपनाया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दो सेंटरों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि इन सेंटर्स में बड़ी गड़बड़ियां पाई गईं। राज्य स्तर पर जांच के लिए सरोगेसी के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। साथ ही जिले में पंजीकृत सभी आईवीएफ सेंटर्स की सघन जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाकर औचक निरीक्षण किया गया। इन्होंने 28 केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि ARTV नियमन अधिनियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन चलाए जा रहे महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय के ENT विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत माथुर ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने क्षेत्र में पहली बार बिना किसी बाहरी चीरे के मुंह के रास्ते से थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। ऑपरेशन में अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग किया गया और एंडोस्कोपी की मदद से स्क्रीन पर देखते ये ऑपरेशन हुआ। इससे मरीज को दर्द भी कम होता है और रक्तस्राव भी कम होता है। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा और खेरवाड़ा क्षेत्र के गांवों में ये रथ पहुंचा। इस दौरान कला जत्थों की ओर से आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जगह जगह ग्रामीणों ने रथ का पूजन कर स्वागत किया। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 13 विभागों की जानकारी घर घर पहुंचाई जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने बड़गांव की वाटी ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने बेदला में भी राजकीय विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। वाटी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से मेवाड़ के महापुरुषों से प्रेरणा लेने का आह्वान

0: किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त कर नए विद्यालय भवन बनाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। श्री दिलावर ने गांवों में नियमित साफ सफाई के भी निर्देश जारी किए। वहीं बेदला में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा और प्रकाश खटीक की माताओं का सम्मान किया। राज्य सरकार की ओर से उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में चंदन वन विकसित करने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वन मंत्री संजय शर्मा उदयपुर पहुंचे। उन्होंने पिछोला झील के पास कालका माता वन क्षेत्र का जायजा लिया। वन मंत्री ने अधिकारियों से चंदन वन विकसित करने की योजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि चंदन के पेड़ आर्थिक, औषधीय और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कल से होने वाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। ये परीक्षा जिले में 189 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 59,300 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगी। ये परीक्षा दो दिनों में अलग अलग विषयों के लिए होंगी। प्रशासन की ओर से सुचारू और पारदर्शी परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तय कीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 उजू ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई जावेला। और राज्य रातुणी हल्का में जबरदस्त गर्मी, दूजा हल्का में कठे कठे बरसात रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, किसाना ने तकनीक और निवेश रो पूरो फायदो दिरावन सारू राजस्थान सरकार खेतीबाड़ी और वाऊ जुड़िया महकमा रो एक जोड़ बनार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 रा सिलसिला माए आज हैदराबाद माए राखी जिया निवेशक सम्मेलन माए आ जानकारी दीनी। वह हैदराबाद ने आईटी और एग्रीटेक नवाचारा रो मोटो केंद्र बताता था। कहो के ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती रा मॉडल राजस्थान रा कृषि भविष्य सारू खास है। वह राज्य में चल रही ईआरसीपी और यमुना जल समझौता सरीखी मोटी परियोजनाओं रो जिक्र करता था। कहो के सरकार किसाना ने जरूरी तादाद में पानी और साधन मुहैया कराने तय कीनो है। श्री शर्मा निवेशक और उद्यमियों ने 23-25 मई ताई जयपुर माए फेवन वाला खास ग्राम सम्मेलन माए शामिल फेवन रो न्योतो दिनो।
2: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
1: इन पहली मुख्यमंत्री महात्मा ज्योतिबा फुलेरी 200वीं जयंती रा सिलसिला माए जयपुर माए राखी जिया कार्यक्रम माए शामिल फिया। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश रा हर ब्लॉक माए सावित्री बाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जावेला और सगला जिला माए महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोलिया जावेला और 16 नुआ छात्रावास बनाया जावेला। श्री शर्मा कहो कि बूंदी जिला रा हिंडौली माए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले री जिंदगी रो दर्शाव करण वालो पैनोरमा और लाइब्रेरी ई बनाया जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त करती नी है। राज्य सरकार री सिफारिश पाछे निरस्त करी जी आ परीक्षा अब नुआ सिराओं पाछी ली जावेला। आयोग रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सितंबर 2026 माए संभावित ई परीक्षा माए पहली लेरी जी लिखित परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला 383,097 उम्मीदवार ही शामिल फै सकेला। नुआ उम्मीदवार आ परीक्षा नहीं दे सकेला। उम्मीदवार ने

0: यहाँ माय सुधार सारू 16-30 मई ताई रोटी एम डी ओ चियो है इन माय मोबाइल नंबर ईमेल और चिट्ठी पत्री रोपतो अपडेट करियो जा सकेला बदलाव हूँ पहली वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहते केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनो जरूरी फैला कोई बदलाव नहीं करण री सूरत माई पोर्टल माथा जार फोटो और दस्तखत काम लेवन सारू सहमति देवणु और अर्जी फाइनल सबमिट करनो जरूरी फैला कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जापावाड़ी लुगाइया री मौत रा मामला री जांच सारू समिति बनाती रिची है संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल आ जानकारी दीनी इन बीच अस्पताल प्रशासन जापावाड़ी चार महिलाओं री किडनी फेल वे जावन री आज पुष्टि कर दीनी आरो डायलिसिस करियो चाहियो है राज्यरा ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक अस्पताल रो दौरो कर वार्डा और ऑपरेशन थिएटर में साफ सफाई री व्यवस्था रो जायजो लीनो औषधि नियंत्रण विभाग री ओरू दवाइयां और फ्लूइड रा 23 नमूना लिया चिया है इन बीच जयपुर बुलाई चिया डॉक्टर री टीम ही मरीजा रा इलाज रा काम माथा नजर रख रही है एहतियातन सरकार संबंधित दवाइयां काम लेवन पर पूरा राज्य में तुरंत रोक लगाती नहीं है ध्यान जोग है कई घटना माए हाल ताई जापा वाली दो लुगाइया री मौत वे की है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो है कि राज्य सरकार बच्चा और मायड़ा रा बेहतर स्वास्थ्य पोषण और पूरा विकास सारू पूरा मनु काम कर रही है वे आज जयपुर माए महिला और बाल विकास विभाग रा एहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए बोल रही ही दिया कुमारी पोषाहार वितरण माए साफ गोई और साफ सफाई तय करण माथे जोर देता थका कहो क इणु स्वस्थ और मजबूत राजस्थान रो सपनो साचो वेला देश माए घरेलू रसोई गैस री पूर्ति आसानियों करी जा रही है और कठे हुई पूर्ति माए कमीरा कोई समाचार नहीं है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय री सचिव सुजाता शर्मा आज नई दिल्ली माए कहो कि सरकार ग्राहकों ने गैस री कमियों बचावन और इनरा मूल माए थरता राखण सारू सगला जरूरी जतन कर रही है वे बतायो कि मार्च महीनाओं हाल ताई 6 लाख बत्ता पीएनजी कनेक्शन चालू कर दिया चिया है
1: अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो प्रदेश में आए काल इन साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जावेला इन तेत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर सगली अदालता उपभोक्ता मंचा और राजस्व अदालता में गाड़िया रा चालान चेक बाउंस वेवन बैंक लिया जिया कर्ज रा चुकारा और घरेलू झगड़ा सरीखा राजीनामाओं निपटाया जावन वाला मामला रो निपटारो करियो जावेला सवाईमाधोपुर जिला में लोक अदालत सारू 10 बेंच बनाई ची है जिला मुख्यालय माथा 4 और गंगापुर सिटी माए 2 बेंच सुनवाई करेला इनके अलावा बौनली खंडार बामनवास और चौथ का बरवाड़ा माई 1-1 बेंच लगार मामला निपटाया जावेला झुंझुनू जिला माए लोक अदालत निपटारा सारू ले जाया जावन वाला करीब 15,000 मामला ने पिछाण करी ची है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी बतायो के लोक अदालत माए मामला रो निपटारो समझाइश और आपसी सहमतियों करियो चावे है
2: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारे और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण है उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है
0: भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा नुआ मुख्यमंत्री बनेला आज कोलकाता माए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह री मौजूदगी माए भी भाजपा विधायक दल री मीटिंग माए वाना दल रा नेता चुनी चिया श्री अधिकारी बंगाल माए भाजपा री पहली सरकार रा मुखिया फैला पश्चिम बंगाल माए पहली दफा भाजपा रा राज माए मंत्रिमंडल माए शामिल करया जावन वाला ने काल कोलकाता रा ब्रिगेड परेड ग्राउंड माए शपथ दिराई चावेला 21 जून ने मनाया जावन वाला

14वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला में राज्य में आई जागरूकता कार्यक्रम रख्या जा रहा है। सवाई माधोपुर में आयुर्वेद विभाग री ओरों 50 दिन रो काउंटडाउन योगा अभ्यास कार्यक्रम चलायो जा रो है। वठे पहलीवाड़ा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया दशहरा मैदान में लोगों सागे योग रो अभ्यास कीनो और करो योग रहो निरोग रो संदेश दीनो। कोटपुतली बहरोड जिला रा पावटा और पाली जिला रा कोलीवाड़ा में आई स्कूली विद्यार्थियों सारू योग शिविर लगाई चिया। टीबी मुक्त भारत बनावन रा 100 दिन रा अभियान

0: तीनो कोटपुतली बहरोड जिलारा पावटा अरपाली जिलारा कोलीवाड़ा माई स्कूली विद्यार्थियां सारू योग शिविर लगाईचिया। टीबी मुक्त भारत बनावन रा 100 दिन रा अभियान माए सवाई माधोपुर जिला माए खास स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। आज बामनवास कने भावरा और खंडार कने बलवन खुर्द माए शिविर लगाईचिया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गोयल बतायो कि शिविर माए चलती फिरती मशीनाओं छाती रा एक्सरे खून माए शुगर और ब्लड प्रेशर री जांच करी जी। वो अभियान जिला रा न्यारा न्यारा गाँव माए 12 मई ताई चलेला। अरब मौसम प्रदेश में आज घनखर ठोणा मौसम सूखो रहो। राज्य रा आतुणी हल्का में जबरदस्त गर्मी और लू जिंदगी माथे असर पड़ियो है। माना बाड़मेर खबरनवीस बतायो कि जिला में पड़ रही जोरदार गर्मी रा कारण जिंदगी माथे असर पड़ियो है और अस्पताल में लू रा मरीजा रा इलाज सारू खास व्यवस्था करी ची है।
1: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: बालोतरा जिला में जसोल री लड़कियां री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम राखी चियो। इन तेज टाबरियां जागरूकता रैली निकाली। रैली में नारा लगार वोट देवन रा महत्व री जानकारी दी री ची। ये मौके विद्यार्थियों ने वोट देवन री प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकार माथे आधारित नानी फिल्म बताई ची। शिक्षा मंत्रालय री ओर एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल रा तेत छठो युवा संगम राख्यो चार्यो है। इनरो मकसद न्यारा न्यारा राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशा रा नौजवाना माए सांस्कृतिक एको बधावन सागे लोगों बीच संपर्क मजबूत बनावनु है। इन कार्यक्रम रा तेत देश भर चुनी जा युवा प्रतिभागी काम करण रा बेहतर तरीका रा न्यारा न्यारा पहलुआ री समझ हासिल करण सारू सहयोगी राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशा रो दौरो कर रहा है। पालीरा दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज सारू भारत री टीम माए चुनी चिया है। आहोड़ श्रीलंका माए 25-28 मई ताई राखी चावेला। भरत पवार साल 2022 माए राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम रा कप्तानी रहा। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तय कीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओरू SI भर्ती परीक्षा 2021 पाछी ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत का लगाई जावेला। और राज्य रा तुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी दूजा हल्का माए कठे कठे बरसात रा आसार। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज का एक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं बजरंग सारस्वत और अश्विनी व्यास।

0: जानकारी हासिल कर सा और थे हो तकनीक रहा आदमी बजरंग भाई थाने नई तकनीक के बारे में चौकी जानकारी रहे। देखो गांव सुब बांड है शहर खानी थे जाता रहो तो आज कोई नई बात बताओ बजरंग भाई जिया थे काल केवा कि बा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अब मोबाइल इंटरनेट सु देखो आगे री चीज नहीं आएगी तो किसान भाया ने इसु किया लाभ है थोड़ी फिर बारे में भी जानकारी खेती और पशुपालन के बारे में एआई रो कई महत्व है।
1: अश्वनी भाई हूँ तो बात करनी चाहूँ तो हो गर्मी में थे कि तावड़ो घणो पड़े है और तावड़े टाइम रे मैंने काम है जिका यहाँ सोचा कि वो काम दिनों के करा वो काम सिंझा करा और साके आप बात टोरी एआई री तो एआई जकी है यूं कोई भी क्षेत्र अछूतो रहो कोनी।
0: अब आप भाई एक बात पहला मैं भी कहसु थाने
1: बताओ सा
0: थे बार तावड़े रो जिक्र भी करियो मौसम में परिवर्तन भी आ रहे है अब आर थे एक चीज देखी कि जिका मौसम रा पूर्वानुमान है कितना सटीक जा रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल आ चीज गौर कर रही मैं पश्चिमी विक्षोभ लगो लगा रिया है और मौसम पूर्वानुमान मायने आंधी आउन रही तेज हवा चलन रही छांटो छिड़को होने रही ओलावृष्टि होने रही बराबर चेतावनी आ रही है। मोकला जिका सचेत जागरूक किसान भाई है बे आपरे धनरो आपरी उपज रो बे बचाव भी करियो है और नुकसान होने बचायो भी है तो आपने ई मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन पर बराबर नजर रखनी है और बीते अनुसार आपने सावचेत रेर कमर कसर काम करना है।
0: तो बजरंग भाई आज को मौसम पूर्वानुमान लगातार आपने मिल रहे है बीमे भी एआई री बहुत बड़ी भूमिका देखी जा रही है जिया कद बरसात आ सके कद तेज हवा चाल सके किसान भाई ने कद तक आपरी फसल ने काट लेनी है सुरक्षित राख लेनी है तो एआई रो बहुत ज़्यादा महत्व खेती और पशुपालन में भी आज देखने आपने मिल रहे है।
1: अब ड्रोन पद्धति हो वो चाहे दूसरा नवाचार हो वो खेती रमायने सगड़ा क्षेत्र जगह है वे एआई से जुड़ी उड़ा है तकनीक रो ओ दौर है इन मायने मोबाइल इंटरनेट ए आपने जीवन ने बहुत प्रभावित करया है पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जकी है इरो दौर अबे ओ शुरू हो गयो है तेजी ओ जोर पकड़ रहे है आ तकनीक क्रांतिकारी परिवर्तन है अश्विनी भाई आपारे जीवन रमायने और आ तकनीक आज शहरी कोनी महानगरी कोनी आज गांव ढाणी ताई किसान भाया ने नवी सु नवी जानकारियां चुटकी बजावते प्रदान कर रही है। इरो उपयोग बहुत आसान है सागे बिचारे कोई परेशानी रमायने केवल मोबाइल माध्यम से आपा समाधान हासिल कोनी कर सकानी आपने कृषि वैज्ञानिक है कृषि अनुसंधान केंद्र है कृषि विज्ञान केंद्र है कृषि विश्वविद्यालय है बारे भी संपर्क में बराबर बनेड़ो रहनो पड़सी।
0: हाँ बात बजरंग भाई थे लाख रुपया री गई कि किसान भाई गांव ढाणी में बैठ खाली मोबाइल और इंटरनेट रे माध्यम से जानकारियां तो हासिल कर सके लेकिन भी जानकारी में सत्यता कितनी है आ मोटी बात है। तो इरे वास्तर जिका सरकार राज्य का क्षेत्र है जिया थे बतायो कि किसान सूचना केंद्र है या कि चिकित्साओं संबंधित है तो डॉक्टर साहब है तो बिया सु मिल रही सूचना सही रूप में प्राप्त करी जा सके लेकिन समय रह सागे सागे अबार एआई रो और शुरुआती दौर है बजरंग भाई तो थोड़ी सी में समस्या भी है लेकिन आवला ने टाइम में ओ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शहरी क्षेत्र रे सागे सागे ग्रामीण और ढाणी में बैठे किसान भया वास्तर भी एक वरदान रे रूप में काम कर सी अगर अबार सुई धीरे धीरे आपा ई तकनीक सु जुड़ा इन्हें समझा और इरे साथे एक होने रो प्रयास करा तो आपा खेती में पशुपालन में बहुत चोखी उन्नति भी कर सका दो रुपया चोखा कमा सका।
1: तो ओ एक तरह रो नवाचार है खेती और पशुपालन रे मायने आपा सावचेत जागरूक रे समय रे सागे इरो लाभ ले सका उपयोग कर सका और आपा आपा रो जीवन स्तर है बिने आछो बना सका।
0: वाह बजरंग भाई एआई रे बारे में थे इतनी विस्तार सुर इतनी चोखी जानकारी दी कि जी शोर हो गयो मारो भी और सुनने वाले किसान भयारो भी। अब कार्यक्रम में आपा मिलर सुना ओ पहलड़ो लोक गीत
1: सुनाओ सा।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम रे उड़ीक राखणिया सगड़ा हेताड़ू भाई बहना ने घना घना राम राम सा। मैं हूँ आपरे सागे बजरंग सारस्वत और मारे सागे है
1: अश्वनी व्यास।
0: तो मां दोना कानी सु आप सबा ने घना घना राम राम।
1: राम राम
0: अश्वनी भाई थाने भी घना घना राम राम।
1: राम राम बजरंग भाई, राम राम। आज कई दिना बाद चौपाल में थानो आगमन हुए तो जरूर आज चौकी चौकी

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: वाह बजरंग भाई अबार अप्पा, गीत तो सुने हो भाई सारा बीरा। और वन्य जीव जिका है बजरंग भाई, बियाने वास्तर ई गर्मी रे मायने, चाहे गोचर है चाहे आस पड़ोस में पेड़ है अपने, बट है पानी और दाना री व्यवस्था करनी। अपने पूर्वजारी देन है सागे सागे प्रकृति वास्तर, प्रकृति रे उत्थान वास्तर आ चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है।
7: आ पर जिम्मेदारी भी है, आ पर दायित्व है। आई हूँ सोचे हो कि पहली अपा बात करी खेती बाड़ी री और पशुपालन री, तो अब ए जी का जी जिनावर है, चिड़ी है, कमेड़ी है, मोरियो है, दूसरा जीव जिनावर है, अपर जैव विविधता रा घटक है। तो आ सब रे वास्ते पानी रो बंदोबस्त करने री, दाने रो बंदोबस्त करने री मोटी जिम्मेदारी अपा री है। अब आर जेठ रो महीनो चाले है और तावड़ियो पड़े है अकरो, तो अपारा जका गोचर है, ओरण है, वन्य क्षेत्र है, रोई है, बट है अपाने बराबर जावनो है, सेवा करनी है, पानी रा पड़सिया राखना है पक्षियां वास्ते, जका वन्य जीव जंतु है या घुमंतु पशु है बार वास्ते खेड़ियां बनोड़ी है, पानी रो कोई सीमेंट रा कुंडा है, बार महीने पानी नखावने री अपाने व्यवस्था करनी है। पक्षियां सारू अपाने चुगो है, ज्वार है, बाजरी है, बा भी अपाने बरसावनी है। और जैव विविधता रेवेला अश्विनी भाई तो ही अपा रह सकाला, मनुष्य जाति रो और दूसरा जिका जीव जिनावर है, पशु पक्षी है, आरो आपस रे मायने समन्वय है, एक दूसरे सु आरी पहचान है।
6: बिल्कुल बजरंग भाई जी, यहाँ थे जैव विविधता की बात करी तो अपना जिका है गोचर है, ए ओरण है, ए जिकी अपनी थात्या है, ए जिका छोटोड़ा खुला स्थान है, ए प्रकृति रा हॉटस्पॉट है बजरंग भाई। अब आर आप देखो AI री बात करी, अब आप एक हॉटस्पॉट शब्द भी खूब चलो, ऑक्सीजन री कमी चारों खानी देखने मिले तो अपन ऑक्सीजन मिलसी कटे सो, ई हॉट स्पॉट है सो, ए जिका गोचर ओरण है, अठे ही प्रकृति रो पुनरुद्धार भी हो। छोटा छोटा कीट पतंगा जीव जिका सगली खाद्य श्रृंखला रा हिस्सा है, जिका सु प्रकृति आगे बढ़े और आपने अलग अलग रूप में पोषण मिले।

0: तो बे भी आपने ई गोचर और ओरण शू ही मिले ई वास्तरी अपना पूर्वज जी का है यानी खुली छोड़ गया। लेकिन ई गोचर और ओरणारे मायने जी का पशु पक्षी है जी का छोटा जीव जंत है बे आपने भरोसे बजरंग भाई। तो थोड़े पानी और थोड़े दाने की व्यवस्था अगर आपा पेड़ा रे नीचे गोचर माथे चाहे घर रे छत पर भी थोड़ा पानी और दाना राख देवा तो छोटी चिड़ी कागला कमेड़ी ई तेज गर्मी में जीवित रह सके अपन छोटो सो प्रयास कोई रे जीवन रो संरक्षण कर सके। तो अपन सगला ने मिल मानसून सु पहला गोचर में भी वृक्षारोपण करनो है बीरे सागे सागे छोटा छोटा जीव जंतुओं वास्ते पानी की व्यवस्था और दाना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी है।
1: और एक बात और कहनी चाहूँ के लारले बरस जका अपा रूख रोपया हा पौधा रोपया हा बे की मोटा होया है की पान पांग रहा है तो बारे भी अपा ने जिम्मेदारी पूरी निभावनी है, नज़र राखनी है, बाने पानी देवणो है, बारे किनारे कांटा है, बाड़ है या इंटारो जको वो घेरो है वो बनार बाने सुरक्षित राखना है। बे जद नाने सु मोटा हो जावेला तो बे आपरी रक्षा खुद कर सकेला और आवनाड़े समय में जब मानसून आवेला बिरखा होवेला अपने नुआ पौधा रोपण करना है। बिर वास्ते स्थान रो चयन है वो भी अपने ही करना है, सोच विचार कर अपने अबार थकी स्थान रो चयन कर लेना है और समय आने पर अपने भांत भांतरा यानी न्यारी न्यारी किस्म का पौधा है वह जरूर जरूर रोपना है।
0: तो चलो बजरंग भाई अब सुना पा कार्यक्रम में अगलो लोकगीत।

0: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग एक तिहाई बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है, तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत

0: टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहां एक रोचक तथ्य है, साफ ऊर्जा स्रोत अब दुनिया की बिजली का लगभग एक तिहाई हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है।
1: वासा सुनी भाई, बहुत ही शांत रो गीत सुनायो, संदेशा सुनाया। अरे सुनी भाई, अठे तो आमा तो यहाँ मन करे कि हथई करता रे वहाँ, अच्छी कामरी बात सुनता रे वहाँ, बताऊता रे वहाँ। अरे गीत अल्लाह जिका है, गीत संगीत है बे सुनता रे वहाँ। अरे जी हाँ, आप कार्यक्रम में बात करा हाँ, किसान भाइया रे वास्ते, पशुपालन रे वास्ते बिया ही आज बात करा आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना री। तो अश्विनी भाई, आज की योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 2015 में शुरू करी जी ही, और एक केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना है जिनरो लक्ष्य है हर खेत में पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद अधिक फसल, यानी एक एक बूंद सु मोकड़ी जी की उपज है बा इधर सागे सिंचित क्षेत्र रो विस्तार करना, बंजर क्षेत्र है बिने उपजाऊ में बदलना, और पानी री बर्बादी ने कम करना, पानी री बूंद बूंद रो अच्छो उपयोग करना। आज की तकनीक है आ फव्वारा सिंचाई पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति माथे 45% सुलेर 80% ताई अनुदान प्रदान करे है। और अश्विनी भाई, इरी खास बात ये भी है के किसान भाई पोर्टल जको है PMKSY वेबसाइट माथे इरो ऑनलाइन आवेदन भी कर सके, जेकर मैंने जियाँ जियाँ जानकारी पूछे बियाँ बियाँ भरता जावे तो वो आवेदन जको है आगे प्रक्रिया में चाल तो रेवे। अब थे पूछो ला के सागे कागज कहीं कहीं चाहिए, कोई भी किसान भाई है बिरमन में आ रहे हुए कि भाई कागज कहीं कहीं चाहिए, तो कागज भी सा किसान भाई रो आधार कार्ड है, बैंक पासबुक रे पेलड़े पाने री फोटो कॉपी है, और जमाबंदी जकी है भूमि रो रिकॉर्ड, और पासपोर्ट आकार रो फोटो जको है, ए इता कागज पर्याप्त है। आप जका ई मित्र केंद्र है बैठे आप जार बत्ती जानकारी ले सको, आप रो आवेदन भी कर सको।
2: सागे सागे जिका सीमांत और छोटा किसान योजना सु नहीं जुड़ा है और नहीं लाभ उठा रहा है, तो आप जिम्मेदारी भी बने कि बिया ने भी आप योजना की पूरी जानकारी देवा और ई मित्र रे माध्यम से बिया नो पंजीयन करवार और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रो लाभ बिया ने देवा। ई योजना रे तहत मिलन वाले अनुदान रा पैसा बहुत है, तो इमें इसी कोई बात को नहीं कि अगर 100 ज़्यादा लोग भी आवेदन कर ले तो बिर मायने पैसा कम पड़ जावे, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों रो आवेदन कराना है ताकि सब किसान रो लाभ उठा सके और आप री जी की कृषि है बिना मजबूत और आर्थिक रूप से संपन्नतापूर्ण बना सके। तो बजरंग भाई, आप बहुत चुकी बात करी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अब आप कार्यक्रम में देखो एक गीत और सुन ला।
1: सुनाओ।

तो अश्विनी भाई भजन सुने आपा बहुत ही आनंद आयो। और बातचीत चाल रही आप खेतीबाड़ी रही पशु पालन रही आपा जी का पंखेरू है जिका वन में रेवनाड़ा जीव जिनावर है शीढ़ी कमेड़िया हैं आरी बात चाल रही ही सागे ही लगो लग में बात करता चला।

0: जी मैं पहली बतायो था ने के तावड़ जो है वो अकरो पड़न लाग रियो है। जेठ रो महीनो चाले और अब क्या इदक मास भी है, जेठ रा महीना भी दो है, तो ओ जो तापमान है वो लगोलग बढ़तो जा रियो है। मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन में भी बतावे है कि गर्मी और तेज पड़ेला, तापमान बढ़ेला, कई बार और समाचार आवे है कि बिरखा भी कम रह सके है लारले सालारे मुकाबले। तो ओ जो जलवायु परिवर्तन है इरे बाबत आपाने सावधान सतर्क रहनो पड़सी, और सागे ही आपाने सावधान सतर्क रहनो पड़सी कि बढ़ते तापमान रमाइने अपार जो को पशुधन है, अपार जो को धीणो धापो है, गायां हैं, भैंसियां हैं, ऊंट है, आ सबरी देखभाल भी आपाने अच्छे तरीके करनी पड़सी। ओ जो को मौसम बदलोड़ो है या तावड़ो तेज पड़ रो है भी हिसाब बाने छिया में बांधनो, बाने दिन भर में कई बार संभाल करना, पीवण ने जो ठंडो पानी है मौसम रे अनुसार पानी है वो देवणो, रताती हवाया जकी चाले है, लू चाले है, बढ़ती चाले है, बीऊ बाने सीधे संपर्क सु बचावना है। और नाना टुकड़िया टुकड़ी है बारो तो कहणो ही कहीं बारो विशेष ध्यान रखनो है कि बे जे बीमार पड़ गया नहीं तो बारी माँ जकी है, दुधारू पशु है, अपारे गाय है, भैंस है, बीरे जको दूध उत्पादन है बीरे माथे विपरीत असर सीधो पड़े है।
1: वाह बजरंग भाई बिल्कुल सही बात कही थे, बदलते मौसम में पशुधन की ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अगर मान लो ध्यान रखते रखते भी कोई पशु ने लू या तपागारी समस्या होगी है तो बेरो विशेष ध्यान रखना है, डॉक्टर साहब ने दिखाना है, दवाया देनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो बाकी पशुओं से भी ने अलग रख देना है, चारे पानी रो खास ध्यान रखना है ताकि वो बीमारी में ज़्यादा नहीं उलझ पावे और समय पर भी रो इलाज हो जावे। तो छोटी छोटी सावधानियाँ जी की है वे पशुपालक और किसान भाइयों वास्ते बहुत बड़ो बड़ो लाभ दे जाया करे। अब सुन सापा कार्यक्रम में अगलो लोकगीत।

0: वाह बजरंग भाई, कार्यक्रम रे माने आज बहुत चोखी चोखी जानकारियां हासिल की और आपा बार सुनियो जूरी स्वर्णलता व्यास रो गायडो बहुत ही सुंदर और मीठो गीतड़लो। और अब देखो घड़ी कह रही है विदा लेने री, तो बजरंग भाई कई मानस है थानो?
1: मानस अब वही है कि समय अनुसार आवणो और समय अनुसार जावणो। तो आज रे ग्रामीण जगत कार्यक्रम रो समय पूरो हो रियो है, आपसु फेरू मिलना होसी। आज रो कार्यक्रम संपन्न करने री आज्ञा देव सा बजरंग सारस्वत
0: और अश्वनी व्यासरा। आज रा
1: घणा घणा राम राम, राम।

ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया है।

रंगरेज कौन है? रंगरेज है गुरु। गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया है।

स्वाभाविक है। कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया है।

अनूप जलोटा के गाइस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

सुखविंदर सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था गर्व। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की आवाज में फिल्म का नाम राजा रानी।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म तेरी बाहों में। फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अभिजीत सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम गर्ल फ्रेंड।

फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों को फिल्म मिलेंगे मिलेंगे मैं।

सोनू निगम और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:30 बजे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

कालूनाथ और साथियों की आवाज में अभी आपने सुनाई राजस्थानी लोक गीत। आइए सुनते हैं छोटी बानो और साथियों की आवाज में ये गीत।

रमण्या चाला जोधपुर भेज जोधपुर का कबूतर और भाई उठता रे तल बोली थोड़ा बोलिया लागर घुमतरा भाई लागर घुमतरा मोटर पाछ।

रोज कन मांगे दूध राबड़ी नानी गाली खीर रोज कन मांगे दूध राबड़ी नानी गाली खीर जिमन मदद कानो बेचो करी दंगावर शीर रवाई नमीन कान्या

चाला जोधपुर, ये जी जोधपुर का कबूतर आर भाई उड़ता रे फुर फुर, अरे कह मोटर बोली बुर, छोरा बोलिया हुर, लागर गिंदकरा, लागर गिंदकरा मोटर

रूस लारे कबूतर सूत कानो गयो रूस लारे कबूतर सूत। ये जी मोर राम जी करा

0: फिर जी नानी जी ने दिखो को नी सिराम पर वो जीरो कान्यो गयो भागे नानी के गई लाग कान्यो गयो भागे नानी के गई लाग हे जी कान्यो रोए भाई नानी दौड़े हे जी नानी दौड़े कान्यो रोए हे छेड़े नया जी राग हे जी छेड़े रे दीपक राग रे भाई कान्या रे मान्या कुर साला जोधपुर
1: गोविंद सिंह राठौर के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का ही कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
3: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का 1950

0: की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेना

0: सैनिकों को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने

0: इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के

0: पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना फिल्म चिराग में। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म तुम्हारे लिए मैं।

0: फिल्म हिमालय की गोद में मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 9:30 बजे हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वेटनरी ऑडिटोरियम बीकानेर में आकाशवाणी बीकानेर द्वारा आयोजित शास्त्रीय संगीत।
1: करंट अफेयर्स। भारत्स इनविंसिबल स्पिरिट। टू टॉक अबाउट सोमनाथ spirit and how in a world marked by divisions, Somnath gives us a civilizational message of shared unity and prosperity. I'm joined by two distinguished guests, Padma Shri Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Miss Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath temple has not just as a place
2: आप सभी संगीत प्रेमियों का आकाशवाणी बीकानेर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज की ये शाम केवल संगीत के नाम नहीं बल्कि उस अमर स्वर यात्रा का उत्सव है जिसने 9 दशकों से भारत के जन जन तक संस्कृति, संवेदना, साहित्य, समाचार और संगीत का प्रकाश पहुंचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की उस विश्वसनीय, आत्मीय और कालजयी आवाज की जिसे हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, जो हमारी रग रग में रची बसी हुई है। सन 1936 से आरंभ हुई ये स्वर यात्रा आज अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण कर नई ऊर्जा, नई चेतना और नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ रही है। आकाशवाणी एक नाम नहीं, एक विश्वास है, एक परंपरा है और एक सांस्कृतिक सेतु है। और बात जब भारतीय शास्त्रीय संगीत की होती है तब आकाशवाणी का योगदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित दिखाई देता है। जी हाँ, यही वो मंच है जिसने असंख्य महान कलाकार देश को दिए। भारत रत्न पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, उस्ताद अमजद अली खान, MS सुबुलक्ष्मी, पंडित भीमसेन जोशी और पंडित जसराज जैसे सभी कलाकारों ने अपने संगीत के माध्यम से अपने सुरों को साधा और

0: आकाशवाणी को प्रतिष्ठित और गौरवमयी बनाया। इसी गरिमामयी क्रम में आज आकाशवाणी बीकानेर शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें बीकानेर के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत कलाकार अमित गोस्वामी और डॉक्टर असित गोस्वामी सितार और सरोद पर जुगलबंदी प्रस्तुत करेंगे। तबले पर उनके साथ होंगे सुप्रसिद्ध तबला वादक शब्बीर हुसैन। हमारे आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुमंत व्यास, कुलगुरु राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की गरिमामयी उपस्थिति है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अनुरोध करेंगे आकाशवाणी बीकानेर के क्लस्टर प्रमुख श्री रामजी लाल असवाल से कि वह हम आगंतुकों का स्वागत अपने शब्दों में करें।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी बीकानेर की ओर से आयोजित की जा रही इस शास्त्रीय संगीत सभा में हम यहाँ उपस्थित सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आकाशवाणी का अपना ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आकाशवाणी ने निरंतर कला और साहित्य के क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभाई है। 90 वर्ष के इस सफर में आकाशवाणी ने अपने आप वचन भोजन हिताय भोजन सुखाय को चरितार्थ किया है और देश के समग्र क्षेत्र को अपने माध्यम से उन्नत करने का प्रयास किया है। आज की सांस्कृतिक संध्या में आज के मुख्य अतिथि श्री सुमंत व्यास जी का हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय में दिया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के कलाकार डॉक्टर असित गोस्वामी जी शब्बीर हुसैन का, जो आज की शाम को यादगार बनाने वाले हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ।
0: अब हमारा आग्रह आज की शाम के मुख्य अतिथि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु डॉक्टर सुमंत व्यास से कि वह मंच पर पधारें और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें।
2: नमस्कार। सम्माननीय आकाशवाणी के सभी पदाधिकारीगण, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, जैसा कि उद्घोषिका जी ने पहले बताया था कि आकाशवाणी एक राष्ट्रीय आवाज़ है। मेरे समझ में आकाशवाणी राष्ट्रीय अस्मिता का भी प्रतीक है। समय उतार चढ़ाव लाता है, परंतु किसी भी स्थिति में सभी तूफान और झंझावातों को झेलकर अगर कोई सरकारी संस्थान पिछले 90 साल से सर उठाकर खड़ा है तो उन गिने चुने संस्थानों में आकाशवाणी का भी।
0: तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की इस संगीत यात्रा को और आमंत्रित करते हैं हमारे आज की शाम के सुरों के साधकों को, श्री अमित गोस्वामी सरोद पर और डॉक्टर असित गोस्वामी सितार पर और तबले पर श्री शब्बीर हुसैन को। अमित गोस्वामी और डॉक्टर असित गोस्वामी सरोद और सितार के सिद्धस्थ कलाकार हैं। बीकानेर के कला और संस्कृति में रचे बसे परिवार में जन्म लेने वाले गोस्वामी बंधुओं को संगीत विरासत में मिला है। संगीत की शिक्षा इन्होंने अपने पिता प्रसिद्ध सितार वादक पंडित जसकरण गोस्वामी से ली। पंडित जसकरण गोस्वामी उस्ताद अली अकबर खां के शिष्य रहे हैं। अमित और असित भारतीय वाद्य संगीत के गौरवशाली सैनिया मेहर घराने की समृद्ध परंपरा के संवाहक हैं। परंपरागत शैली के साथ साथ इन्होंने जुगलबंदी की अपनी एक अलग शैली विकसित की है, जिसमें गायकी और तंत्रकारी दोनों का समावेश है। शब्बीर हुसैन प्रतिभाशाली युवा तबला वादक है। इन्होंने पूर्वजों की कला को विरासत में पाया और सीकर से तबला वादकों की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनके पिता रहमान खान आकाशवाणी बीकानेर के प्रसिद्ध तबला वादक थे। इन्होंने मात्र 7 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू किया और आज कई कथक समूहों नृत्य समूहों के साथ साथ देश विदेश में अपने तबले का हुनर बिखेर रहे हैं। तो आइए रसा स्वादन करते हैं सितार और सरोद की जुगलबंदी का। सितार पर हैं डॉक्टर असित गोस्वामी, सरोद पर अमित गोस्वामी और तबले पर इनके संगतकार शब्बीर हुसैन। डॉक्टर असित गोस्वामी और श्री अमित गोस्वामी कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं राग हेमंत में आलाप जोड़ झाला। विलंबित रचना त्रिताल में निबद्ध है व द्रुत रचना एक ताल में है।

अभी आप सुन रहे थे सितार व सरोद की जुगलबंदी, राग थी हेमंत में आलाप जोड़ झाला। कार्यक्रम का समापन आप कर रहे हैं राग पहाड़ी में धुन से।

अभी आप सुन रहे थे राग पहाड़ी में धुन। हमारे आज के कलाकार थे डॉक्टर असित गोस्वामी, श्री अमित गोस्वामी और तबले पर थे श्री शब्बीर हुसैन। आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्ण

0: पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को सुना और सराहा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत संध्या का अब समापन होता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वेटरनरी ऑडिटोरियम बीकानेर में आकाशवाणी बीकानेर की ओर से आयोजित शास्त्रीय संगीत संध्या में सितार और सरोद पर जुगलबंदी की रिकॉर्डिंग। कलाकार थे असित गोस्वामी और अमित गोस्वामी। तबला पर संगति दे रहे थे शब्बीर हुसैन कलावंत। सहभागिता थी कविता वर्मा की। तकनीकी प्रभारी थे गिरधारी राम बाटन। तकनीकी सहयोग था पुरुषोत्तम संजय गौड़ सुरेश गहलोत आलोक साहनी और मुकुल भटनागर का। ओबी प्रभारी थी मीनाक्षी मल्लिक। प्रस्तुति थी बरखा थानवी व्यास और रेवत राम लेगा की। संयोजक थे श्री अमित सिंह। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

दिल तेरा दीवाना, इस फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम क्रांति।

ये आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरकर की। फिल्म का नाम था अनजाना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फिल्म आदमी में मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर रात्रि को 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला में जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा।

0: Control, Integrated Disease Surveillance Program, World Health Organization, and other international health authorities. Somnath Amrit Parv will be celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The Prime Minister, Narendra Modi, will participate in the Somnath Amrit Parv on the 11th of this month at Prabhas Patan in Somnath. Speaking to media, Gujarat State Cabinet Minister Jitubhai Vaghani said that various events will be organized at Somnath as part of the Somnath Amrit Parv, showcasing India's rich cultural and heritage traditions. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। कल प्रातः 5:55 से हमारी पहली सभा के प्रसारण आरंभ होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलो हर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। शुभ रात्रि, जय हिंद।